सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की इस मधुर शांत और सुनहरी बेला में आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं वागड़ की आवाज, यानी कि आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूं आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, हाजिर हो चुकी हूं आपके लिए इस नई सुबह की ताजगी, अपनापन और सकारात्मक ऊर्जा को लेकर। साथियों, रविवार की सुबह सिर्फ एक दिन नहीं होता, ये एक एहसास होता है सुकून का, अपनापन का और खुद से जुड़ने का। और इसी एहसास को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं कार्यक्रमों की एक प्यारी सी श्रृंखला। तो आइए साथियों, इस सुहानी सुबह के सफर पर चलते हैं साथ साथ। साथियों, दिन की शुरुआत होगी सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना से, जहां भक्ति के मधुर सुर मन को शांति देंगे और आत्मा को सुकून से भर देंगे। तो आइए प्रभु स्मरण के साथ अपने दिन का शुभारंभ करते हैं साथियों। इसी के बाद सुबह 6:30 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसी के बाद सुबह 7 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम कथा कहानी, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम है, जिसमें सिर्फ कहानियां सुनाई ही नहीं जाती बल्कि दिल में भी उतारी जाती है और जीवन को एक नई सीख देती है। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट के साथ में। इसी के बाद दोस्तों प्रस्तुत होगा कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक सुबह 7:30 पर। साथियों, ये कार्यक्रम बचपन की मासूम हंसी, छोटे छोटे सपने और सच्चे दिल की बातों से जुड़ा कार्यक्रम है, जो हर चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। इसी के बाद दोस्तों 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान, जहां मिलेंगे हम कुछ खास लोगों से, उनकी कहानियां, उनके अनुभव और उनके जीवन के प्रेरणादायक सफर के साथ। इसी के बाद दोस्तों 8:30 पर कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन हम सुनेंगे, जहां बात होगी सादगी, सत्य और अहिंसा के उस मार्ग की, जो आज भी हमें सही दिशा दिखाते हैं। इसी के आगे अब बारी है साथियों एक बेहद खास और घर की खुशबू से भरे कार्यक्रम की, यानी कि कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जहाँ मिलेंगे दोस्तों पारंपरिक स्वाद, घरेलू नुस्खे और दादी माँ के प्यार से भरे व्यंजन, जो सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखे। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे ठीक सुबह 9 बजे हमारी रेडियो साथी के साथ में। इसी के बाद दोस्तों सुबह 10 बजे बारी है गीत संगीत की, यानी कि कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें हम जुड़ेंगे साथियों नए और लोकप्रिय गीतों के साथ, जो आपके दिल को छू जाए। इसी के बाद 11 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें होगी हमारी मिट्टी की खुशबू, हमारी परंपराओं की मिठास और संस्कृति की झंकार, सब कुछ एक साथ कार्यक्रम लोक संगीत। तो जैसा कि साथियों हम कार्यक्रम की रूपरेखा जान ही पा रहे हैं, इसी के बाद अब अंत में कार्यक्रम हम सुनेंगे ठीक 12 बजे भूले बिसर नगमे, जिसमें हम प्रवेश करेंगे साथियों पुराने गीतों की वो मधुर दुनिया में, जो हमें यादों के खूबसूरत सफर पर ले जाती है। तो साथियों, ये सुबह सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं, यह एक अनुभव है, जहां भक्ति है, सीख है, मासूमियत है और प्रेरणा भी है, साथ ही संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो बने रहिएगा साथियों हमारे साथ, क्योंकि यहां हर आवाज है खास और हर पल है आपके नाम। तो श्रोता साथियों, ये थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को, और शुरुआत करते हैं साथियों आज की सभा की पहले कार्यक्रम आराधना से,

मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रमाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, कवि की कलम वह शक्ति है जो दिलों को बदल सकती है। जहां भावनाएं शब्द बनती हैं, वही कवि का जन्म होता है।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो बाग रेडियो 90.8 FM। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, जैसा कि महापुरुषों की प्रेम गाथा में हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं एक महापुरुष के जीवन परिचय को लेकर, तो जागृति जी, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिसने बहुत कम उम्र में साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा कवि जिसकी कविताओं में संघर्ष था, सपने थे, समाज के प्रति चिंता थी और आम आदमी के जीवन का दर्द भी था। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध बंगला कवि सुकांत भट्टाचार्य की। श्रोता साथियों, सुकांत भट्टाचार्य का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी साहित्य विरासत इतनी विशाल है कि आज भी उन्हें आधुनिक बंगला कविता के सबसे प्रभावशाली कवियों में गिना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके जीवन और साहित्य योगदान के बारे में आज कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि सुकांत भट्टाचार्य के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को हम अवगत करवाएं, तो श्रोता साथियों, जैसा कि अंजलि ने बताया था कि ये बंगला साहित्य के उन महान कवियों में गिने जाते थे जिन्होंने बहुत कम आयु में साहित्य जगत पर अमिट छाप छोड़ी।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें जन कवि और विद्रोही युवा कवि के रूप में भी जाना जाता था। उनकी कविताओं में श्रमिक, किसान, गरीब तथा शोषित लोगों के संघर्ष का सशक्त चित्रण मिलता है। अंजलि
1: जी, जी,
0: मात्र 21 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने बंगला साहित्य को अमूल्य कृतियां प्रदान की। उनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, सामाजिक न्याय और क्रांतिकारी चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। सुकांत भट्टाचार्य का जन्म 15 अगस्त 1926 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था, लेकिन श्रोता साथियों, शिक्षा और साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखता था। बचपन से ही जागृति जी, सुकांत का झुकाव जो है वो साहित्य और लेखन की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। विद्यालय के दिनों में ही वे कविता लिखने लगे थे। उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि कम उम्र में ही लोगों ने उनके भीतर एक बड़ी साहित्यकार की झलक देख ली थी।
0: बिल्कुल,
1: सुकांत ऐसे समय में बड़े हो रहे थे जागृति जी, जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। समाज में गरीबी, शोषण, भूख, असमानता जैसी समस्याएं व्यापक थी। इन परिस्थितियों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और यही अनुभव आगे चलकर उनकी कविताओं में दिखाई दिया।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने उनके जन्म के बारे में बताया कि उनका जन्म 15 अगस्त 1926 को कोलकाता में हुआ था। श्रोता साथी, उनके पिता का नाम बताया तो उनके पिता का नाम निवारण चंद्र भट्टाचार्य तथा माता का नाम सुनीति देवी था। उनका परिवार मूल रूप से वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर जिले से संबंधित था। बचपन से ही जैसा कि सुकांत जी का झुकाव साहित्य की ओर था और परिवार में साहित्य वातावरण होने के कारण उनकी प्रतिभा को प्रारंभ से ही प्रोत्साहन मिला। इसी के साथ अगर साहित्यिक जीवन के बारे में अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, सुकांत भट्टाचार्य ने किशोरावस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था।
1: जी जी।
0: उनकी कविताओं में आम जनता की पीड़ा थी, भूख, गरीबी, अन्याय और संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है।
1: जी जी।
0: वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोताओं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम भी है। उनकी कविताएं द्वितीय विश्व युद्ध, बंगाल के अकाल, मजदूरों की दुर्दशा, सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं पर केंद्रित थी। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जागृति फैलाने का प्रयास किया। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य की भावनाओं से जुड़ी हुई थी। इसी कारण उनकी कविताएं लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता और प्रभावशीलता थी।
0: बिल्कुल,
1: उनकी भाषा आम लोगों की भाषा ही थी। उनकी कविताओं में हमें कई प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता, गरीबों और श्रमिकों के जीवन का चित्रण, क्रांतिकारी सोच, युवाओं के लिए प्रेरणा और भविष्य के प्रति आशा, और इसी के साथ जागृति जी, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण। वे भूख और गरीबी जैसे विषयों को इतनी मार्मिकता से प्रस्तुत करते थे कि पाठक सीधे उन परिस्थितियों को महसूस कर सके। सुकांत भट्टाचार्य ने अपने अल्प जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है छाड़ पत्र, घूमने, पूर्वाभास, मीठे कड़ा, इन रचनाओं में समाज, संघर्ष, आशा और परिवर्तन की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम सुकांत भट्टाचार्य के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में।

0: जागृत जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं की विशेषताओं के बारे में, साथ ही उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि सुकांत की कविताओं का एक महत्वपूर्ण विषय भूख है। उन्होंने भूख को केवल एक शारीरिक अवस्था के रूप में नहीं देखा, बल्कि सामाजिक अन्याय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। जागृति जी, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों और कविताओं में यह संदेश मिलता है कि जब तक समाज में भूख और गरीबी मौजूद है, तब तक विकास अधूरा है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने गरीबों के दर्द को शब्द देकर साहित्य को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
1: जी हाँ अंजलि, हम कह सकते हैं कि सुकांत भट्टाचार्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे सामाजिक समानता और शोषण मुक्त समाज के समर्थक थे।
0: बिल्कुल,
1: वर्ष 1944 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने कई विभिन्न छात्र आंदोलन और सामाजिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी कविताओं में क्रांतिकारी चेतना, संघर्ष और परिवर्तन की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मानते थे कि साहित्यकार का कर्तव्य समाज के कमजोर वर्गों को आवाज बनाना है। जैसे कि उनकी रचनाओं की बात करें तो छाड़ पर घूमने, पूर्वाभास अभियान, मीठे कड़ा, गीति गुच्छ। श्रोता साथियों, इन रचनाओं में सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना, क्रांतिकारी विचार, भविष्य के प्रति आशावादी दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध कविताएं आठोरो बोछार, बयोश, आगामी, क्रशो केर गान, ये सब आज भी बंगला साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी गई है।
0: बिल्कुल जागृति जी, सुकांत भट्टाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र नहीं बल्कि विचारों की शक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। उन्होंने केवल 21 वर्षों का जीवन जिया, लेकिन अपने शब्दों से ऐसी मिसाल जलाई जो आज भी साहित्य और समाज को प्रकाश दे रही है।
1: जी हाँ,
0: उनकी कविताएं हमें संवेदनशील बनाती है, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है और यह संदेश देती है कि साहित्य तभी सार्थक है जब वह मनुष्य के दुख दर्द को समझे और बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे।
1: जी हाँ,
0: सुकांत भट्टाचार्य का जीवन संघर्ष, संवेदना, सामाजिक चेतना और रचनात्मक साहस का अद्भुत उदाहरण है। उनकी विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने आसपास की समस्याओं को देखकर मौन न रहें, बल्कि जागरूक नागरिक बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें।
1: जी हाँ,
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुकांत भट्टाचार्य का जीवन हमें कई सारी सीख देता है।
1: जी हाँ अंजलि, सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं की कुछ प्रमुख विशेषता है, जैसे कि जन सामान्य के जीवन का यथार्थ चित्रण, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज, श्रमिकों और किसानों के प्रति सहानुभूति, देश प्रेम और मानवतावाद, सरल तथा प्रभावशाली भाषा, क्रांतिकारी और प्रगतिशील दृष्टिकोण। श्रोताओं, उनकी कविताएं केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि समाज में परिवर्तन का आह्वान भी थी। लगातार कठिन परिश्रम, आर्थिक कठिनाइयों और कमजोर स्वास्थ्य के कारण सुकांत भट्टाचार्य क्षय रोग यानी कि टीबी से ग्रसित हो गए। उपचार के बावजूद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई। 13 मई 1947 को कोलकाता के जावतपुर टीबी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष थी। इतनी कम आयु में उनका संसार छोड़ देना बंगला साहित्य के लिए भी अपूर्णीय क्षति थी।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, सुकांत भट्टाचार्य का जीवन अत्यंत छोटा था, फिर भी उनका साहित्य योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है अंजलि। उन्होंने बंगला कविता को नई दिशा प्रदान की थी। उनकी रचनाओं ने युवाओं को संघर्ष करना सिखाया था, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया था। उनकी कविताएं आज भी अन्याय के विरुद्ध लड़ने और मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। सुकांत ने यह सिद्ध किया कि महानता आयु की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जो साहित्यिक विरासत छोड़ी, वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त होते जा रहे हैं, तब सुकांत की रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि साहित्य का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवता को समझना और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाना भी है। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि दूसरों के दुख को महसूस करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और बेहतर भविष्य के लिए आशा बनाए रखना एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। जागृति जी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि सुकांत भट्टाचार्य ने अपने शब्दों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सपने देखने वाले लोग ही इतिहास बदलते हैं। उन्होंने युवाओं को निराशा से ऊपर उठकर संघर्ष और परिवर्तन का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उनके विचार आज भी इतने प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो सकता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए कह सकते हैं जागृति जी कि सुकांत भट्टाचार्य आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताएं, उनके विचार, उनकी संवेदनशील दृष्टि आज भी साहित्य प्रेमियों, युवाओं और समाज के हर जागरूक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो बस यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि कलम वही महान है जो समाज के दर्द को पहचान है। सुकांत की वाणी आज भी परिवर्तन की पहचान है।
0: जी हाँ।
1: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।
1: साथ ही आप सभी को छोड़े चलते हैं इस गीत के साथ में।
2: नफ़

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
3: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
5: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी जो हमें बताती है कि गृहस्थी केवल चार दीवारों का नाम नहीं है बल्कि यह प्रेम त्याग परिश्रम और जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। आज की कहानी का शीर्षक है श्रोता साथियों गांव की गृहस्थी। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि गांव की गृहस्थी यानी कि संघर्ष संस्कार और सफलता की पाठशाला। हम देखते हैं कि गांव की गृहस्थी भारतीय संस्कृति की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। ये केवल एक परिवार नहीं होता बल्कि जीवन जीने की कला का विद्यालय है। गांव की गृहस्थी में श्रम होता है, सहयोग होता है, सादगी होती है, आत्मनिर्भरता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं कार्यक्रम कथा कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नई नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानियों को सुनते हैं और उस कहानी से जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में जरूर उतारते होंगे और वैसा ही करने की कोशिश करते होंगे। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आज फिर लेकर हाजिर हूँ एक और नई कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक, जैसे कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि गांव की गृहस्थी, यानी कि श्रोताओं आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि गांव की गृहस्थी कैसी होती है। तो श्रोताओं, कहानी शुरू होती है इस तरह से, जैसे कि एक गांव था और उस गांव में रामलाल नाम के किसान रहते थे। उनका परिवार बड़ा नहीं था, पत्नी गीता, बेटा मोहन और बेटी राधा, यानी कि श्रोता साथियों एक बेटा और एक बेटी थी और एक उनकी पत्नी थी, यानी कि कुल मिलाकर चार जने उस घर में रहते थे। घर कच्चा था, खेत छोटा था और आमदनी सीमित थी, लेकिन परिवार में प्रेम और अपनापन भरपूर था। दोस्तों, रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल जाते। गीता घर के कामों के साथ पशुओं की देखभाल करती, बच्चों को पढ़ाती और घर की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती। एक दिन दोस्तों, गांव में लगातार सूखा पड़ गया, खेतों में फसल खराब हो गई, कुएं का पानी भी कम होने लगा, गांव के कई परिवार शहर की ओर पलायन करने लगे। रामलाल भी चिंतित था। उसने गीता से कहा, अब क्या होगा, फसल नहीं हुई, घर का खर्च कैसे चलेगा। गीता मुस्कुराकर बोली, चिंता से समस्या हल नहीं होती है, मेहनत और विश्वास से रास्ते निकलते हैं। गीता की बात सुनकर रामलाल को थोड़ा सा साहस मिला। दोस्तों, अगले दिन गीता ने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाने का सुझाव दिया। उसने कुछ मुर्गियां भी पाल ली, बच्चों ने भी उसका साथ दे दिया। दोस्तों, धीरे धीरे घर की जरूरत की सब्जियां वहीं से मिलने लगी, ज्यादा सब्जियां बाजार में बिकने लगी। कहते हैं कि मुश्किल से मत घबराओ, मेहनत से राह बनाओ, यानी कि श्रोता साथियों, अगर मुश्किलों से हम घबरा जाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जब भी मुश्किल आए तो मेहनत से हमें रास्ता खोजना है। कुछ महीनों बाद दोस्तों, गांव में एक स्वयं सहायता समूह बना, गीता भी उसमें शामिल हो गई। उसने सिलाई सीख ली और गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। अब घर की आय भी बढ़ने लगी। दोस्तों, रामलाल ने देखा कि उसकी पत्नी अब केवल गृहिणी नहीं बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी है। एक दिन उसने कहा, गीता तुमने इस घर को संभाल लिया, वरना मैं तो हार मान चुका था। गीता बोली, गृहस्थी तब मजबूत होती है जब परिवार का हर सदस्य अपना कर्तव्य निभाता है। दोस्तों, इसी तरह समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। जब गीता यानी कि उसकी माँ को ये बात पता चली दोस्तों, तो उसने बेटे को समझाया, बेटा गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती, अगर मन मजबूत हो तो कठिन परिस्थितियाँ भी रास्ता नहीं रोक सकती। मोहन ने पढ़ाई जारी रखी, राधा भी पढ़ने में तेज थी। गांव के कुछ लोग कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों, रामलाल और गीता ने समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, बेटा और बेटी दोनों हमारे लिए समान है। सालों की मेहनत रंग लाई दोस्तों। मोहन कृषि विज्ञान पढ़कर गांव लौटा, उसने नई तकनीकों से खेती शुरू करवाई। राधा शिक्षक बन गई और गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। दोस्तों, अब वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब वो उनकी प्रशंसा करने लगे थे। और कहा भी गया है कि शिक्षा का दीप जलाएंगे तो जीवन अपने आप ही सफल बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों, समय बीतता गया और एक दिन गांव में पंचायत की बैठक हुई। गांव के विकास पर चर्चा चल रही थी। मोहन ने जल संरक्षण का सुझाव दिया, वहीं राधा यानी कि उसकी बहन ने महिला शिक्षा पर जोर दिया। गीता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। दोस्तों, गांव वालों ने उनके सुझावों को स्वीकार किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा, तालाब बनने लगे, पेड़ लगाए गए, लड़कियों की शिक्षा बढ़ी और लोगों में जागरूकता आई। इसी तरह दोस्तों, एक शाम रामलाल अपने आंगन में बैठा था। उसने अपने परिवार को देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया वो समय जब सूखे ने सब कुछ छीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के विश्वास, मेहनत और एकता ने हार को जीत में बदल दिया। तभी रामलाल बोला, आज समझ आया कि असली संपत्ति जमीन या पैसे में नहीं है बल्कि परिवार का साथ होता है। तभी गीता मुस्कुराई और बच्चे भी भावुक हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि गांव की गृहस्थी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि परिवार एकजुट रहे, मेहनत करे और सकारात्मक सोच बनाए रखे तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता।
गृहस्थी केवल रोटी कमाने का नाम नहीं है दोस्तों, ये जिम्मेदारी, प्रेम, त्याग, सहयोग और विश्वास का विद्यालय है। और कहा गया है दोस्तों कि जहाँ परिवार में प्रेम होता है वहाँ हर संघर्ष छोटा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी गांव की गृहस्थी। आगे भी छोटी मोटी बातें रहेगी वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन बीच बीच में हम कार्यक्रम में मनोरंजन करते हैं, तो अभी मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप बने रहें वागर रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी गांव की गृहस्थी, जैसा कि गांव की गृहस्थी किस तरह से मोहन, राधा, रामलाल और गीता ने अपने घर को संभाला और किस तरह गांव में बदलाव की शुरुआत की, इसी तरह दोस्तों हम भी ये सब चीजें कर सकते हैं। बस उम्मीद होनी चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी और मुश्किलों का सामना करना बहुत जरूरी है। अगर मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, डर जाएंगे, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि ग्रामीण जीवन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण हो या शहरी, हर परिवार में प्रत्येक सदस्य की भूमिका बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, किसान खेत में मेहनत करता है, महिलाएं घर और पशुधन की देखभाल करती है, जबकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर भविष्य की तैयारी करते हैं। सभी मिलकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गांव की गृहस्थी हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। सीमित संसाधनों में भी हम देखते हैं कि लोग संतोष और मेहनत के साथ जीवन बिताते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने की बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं से निराश हो जाते हैं दोस्तों, तब गांव की गृहस्थी हमें धैर्य और संघर्ष का महत्व भी समझाती है। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष से मत घबराना, मेहनत से ही मंजिल मिलती है। और हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि गृहस्थी का सबसे बड़ा आधार ही आपसी विश्वास है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, तब कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती है। जैसे कि रामलाल ने गीता का साथ दिया, किस तरह से उनका परिवार आज शिक्षित भी हुआ और आगे भी बढ़ा। अगर रामलाल उस समय गीता का साथ नहीं देते, तो आज उनका परिवार भी गरीबी में रहता और दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ता। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि जब परिवार साथ होता है, तो हर मुश्किल कार्य भी हम आसानी से कर सकते हैं। और कहते हैं कि एकता की शक्ति अपार होती है, इससे परिवार बहुत मजबूत होता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं की भूमिका भी गृहस्थी में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि गृहस्थ में महिलाओं के बिना गृहस्थ नहीं चल सकता, यानी कि घर नहीं चल सकता। इसलिए महिलाएं अपने गृहस्थ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो ही एक परिवार बहुत अच्छे से चल पाएगा। महिलाएं केवल घर नहीं संभालती दोस्तों, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अपना योगदान देती है। हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह और छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। शिक्षा भी ग्रामीण गृहस्थी को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षित परिवार बेहतर निर्णय ले सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे कह सकते हैं कि गांव की गृहस्थी यानी कि ये केवल जीवन यापन का साधन नहीं है, बल्कि संस्कारों, मेहनत, प्रेम और जिम्मेदारी की जीवंत पाठशाला है। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि मन में विश्वास हो, परिवार में एकता हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आपको भी कहना चाहेंगे कि आपके पास बड़ा घर नहीं है तो निराश मत होइए, यदि संसाधन कम है तो हिम्मत मत हारिए। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं बल्कि परिवार का विश्वास है, मेहनत की आदत और सकारात्मक सोच है। गृहस्थी का बोझ नहीं, अवसर समझिए। अपने परिवार को समय दीजिए, रिश्तों को मजबूत बनाइए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि गृहस्थी की डोर संभालेंगे, प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे, मेहनत को अपना साथी बनाएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा लेने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात।

होगी इसी कार्यक्रम में एक नए प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूं बच्चों बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानियाँ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुमा रहा तोड़ा।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ, तो बच्चों आज हमारी पहली कहानी है ईमानदार चिड़िया और सुनहरा दाना। बच्चों कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत ही मेहनती, दयालु और ईमानदार थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी, अपने बच्चों के लिए दाना खोजती और पूरे दिन मेहनत करती। एक दिन चिन्नी खेतों में दाना ढूंढ रही थी, तभी उसे मिट्टी में चमकती हुई एक सुनहरी चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा दाना था। वह इतना सुंदर था बच्चों कि उसको देखकर किसी का भी मन ललचा जाए। चिन्नी ने सोचा, यदि मैं इसे अपने पास रख लूं तो शायद मुझे बहुत लाभ हो जाए। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की सीख याद आई, बेटी जो चीज हमारी नहीं है उसे कभी अपना नहीं समझना चाहिए। चिन्नी ने निश्चय किया कि वह उस दाने की असली मालिक को खोजेगी। वह पूरे गाँव में उड़ती रही और सभी से पूछती रही कि यह सुनहरा दाना किसका है। कई लोग ने लालच में आकर कहा यह मेरा है, लेकिन चिन्नी उस दाने के बारे में पूछती तो वे उत्तर नहीं दे पाते। शाम होने लगी, चिन्नी थक चुकी थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी गांव के बाहर एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। किसान बहुत ही उदास बेटा था। चिन्नी ने पूछा, बाबा आप इतने परेशान क्यों हो? किसान ने कहा, आज मेरे खेत में एक विशेष सुनहरा बीज खो गया। वह मेरे पिता की निशानी थी, मैं उसे बहुत संभाल कर रखता था। चिन्नी ने उसे उस बीज की पहचान पूछी। किसान ने उसके सारी विशेषताएं सही सही बता दी। चिन्नी समझ गई कि यही उसका असली मालिक है। उसने तुरंत सुनहरा दाना किसान को लौटा दिया। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा अमूल्य खजाना वापस दिला दिया। किसान ने पुरस्कार के रूप में चिन्नी को बहुत सारे दाने देने चाहे, लेकिन चिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं बल्कि सही काम करने के लिए किया है। किसान उसकी बात सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने पूरे गांव को चिन्नी की ईमानदारी की कहानी सुनाई। धीरे धीरे चिन्नी पूरे गांव की प्रिय बन गई। सभी बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे और सच बोलने तथा ईमानदार रहने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद गाँव में अकाल पड़ गया बच्चों, खाने की कमी होने लगी। तभी गांव वालों को चिन्नी की ईमानदारी याद आई। सभी ने मिलकर उसकी और उसके बच्चों की मदद की। चिन्नी ने समझ लिया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में वापस लौटकर हमारे जीवन में सुख और सम्मान भर देते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनता है उसे जीवन में सम्मान, विश्वास और सफलता अवश्य मिलती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आपको मैं आगे एक और प्यारी कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपके अपने दीदी मनीषा दीदी के साथ में।

बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्ही दिलोकी की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले एक प्यारे से कहानी आपको सुनाई थी, अब यही मैं आपको एक और प्यारे से कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है आरव और अधूरा पुल। बच्चों एक छोटे से गाँव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था लेकिन उसकी एक आदत थी, वह किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही छोड़ देता था। कभी चित्र बनाना शुरू करता और बीच में ही छोड़ देता, कभी पतंग बनाता और अधूरी ही छोड़ देता। उसके माता पिता उसे समझते थे लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बच्चों एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। सभी बच्चों को अपनी अपनी परियोजनाएं बनानी थी। आरव ने सोचा कि वह लड़की और गते से एक सुंदर पुल बनाएगा। उसने बड़े उत्साह से काम शुरू किया। पहले दिन उसने पुल का आधा हिस्सा बना लिया लेकिन दूसरे दिन उसे लगा कि यह काम बहुत ही कठिन है, मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी कोई दूसरा बच्चा मुझसे अच्छा मॉडल बना लेगा। उसने अपना काम छोड़ दिया बच्चों और खेलने चला गया। कुछ दिनों बाद उसका मित्र विवान उससे मिलने आया। विवान भी प्रदर्शनी के लिए एक मॉडल बना रहा था। उसका मॉडल अभी पूरा नहीं हुआ था फिर भी वह रोज मेहनत करता रहता था। आरव ने पूछा, तुम रोज इतना समय क्यों देते हो? अगर पहला पुरस्कार नहीं मिला तो? विवान मुस्कुराया और बोला, मैं पुरस्कार के लिए नहीं, सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं बीच में हार मान लूंगा तो कभी नया काम नहीं सीख पाऊंगा। विवान की बात आरव के मन में घर कर गई। उसी रात उसने अपने कमरे में रखा अधूरा पुल देखा। उसे लगा जैसे वह पुल उससे कह रहा हो, तुमने मुझे पूरा होने का मौका ही नहीं दिया। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। उसने तय कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बच्चों अपने मॉडल पर काम करना शुरू किया। कभी गोंद सही नहीं लगती, कभी कोई हिस्सा टूट जाता, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसका पुल आकार लेने लगा। उसने उसमें सड़क बनाई, छोटे छोटे पेड़ लगाए और रंग भी किए। बच्चों जब मॉडल पूरी तरह से तैयार हुआ तो वह खुद देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही पुल है जिसे वह अधूरा छोड़ने वाला था। प्रदर्शनी का दिन आया बच्चों, सभी बच्चों ने अपने मॉडल लगाए। आरव का पुल देखने के लिए बहुत से लोग आए। शिक्षक ने उसकी मेहनत की तारीफ की। बच्चों बाद में परिणाम घोषित हुए। पहला पुरस्कार किसी और छात्र को मिला लेकिन आरव को सर्वश्रेष्ठ प्रयास और लगन का विशेष सम्मान मिला। पुरस्कार लेते समय आरव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वह प्रथम नहीं आया, उसे उस बात की खुशी थी कि उसने पहली बार किसी काम को अंत तक पूरा किया था। घर लौटकर उसने अपना सम्मान पत्र अपने माता पिता को दिखाया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा आज तुमने पुरस्कार की सबसे बड़ी चीज हासिल की है, अपने ऊपर विश्वास। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी काम को बीच में छोड़ना नहीं सीखा। जब भी कोई काम कठिन लगता वह अपने उस पुल की तरह याद करता जो कभी अधूरा था लेकिन धैर्य और मेहनत से पूरा हुआ था। कुछ वर्षों बाद वही आरव अपने स्कूल का सबसे मेहनती और जिम्मेदार छात्र बन गया। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते थे लेकिन आरव जानता था कि उसकी सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब उसने हार मानने के बजाय कोशिश जारी रखने का फैसला लिया था। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी कठिनाइयां नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद अपने काम को पूरा करते हैं। अधूरे प्रयास सफलता नहीं दिलाते हैं साथियों, अधूरे प्रयास सफलता नहीं दिलाते हैं बच्चों, लेकिन निरंतर मेहनत अवश्य दिलाते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

बच्चों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुंद, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुंद, आपड़ी जे नदिया हैं, ये हुके जाएंगा, खेतर मंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुंद, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
4: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

साथियों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ श्रोता साथियों, भाग्य भी उसका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं।

0: मिलते हैं।
1: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी हमारे बीच में नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जीवन के कुछ अनुभवों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
2: नमस्ते मैम।
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे वागड़ रेडियो परिवार में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं, जो कि हर रविवार को विशेष अतिथियों के साथ हमारा कार्यक्रम रहता है, तो सर आज कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
2: जी मैम, मेरा नाम रमेश चंद्र पाटीदार है और मैं डूंगरपुर जिले से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं बांसवाड़ा शहर का ट्रैफिक इंचार्ज हूं और लोगों को ट्रैफिक के बारे में, काफी नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूं और यातायात व्यवस्था सुधारने का कार्य कर रहा हूं।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो सबसे पहले मैं आपके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
2: जी मैम, बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा आपने, बचपन की याद दिला दी है।
1: जी
2: तो निश्चित तौर से हमारा बचपन बहुत ही अभावों में बीता है। मेरा गांव नौगांवा है, जो डूंगरपुर जिले में है।
1: जी बिल्कुल।
2: और बिल्कुल रोड से कटा हुआ, वहाँ ना कोई लाइट की सुविधा, ना ही कोई रोड की सुविधा। ऐसी स्थितियों में भी हमने अभावों में हम रहे।
1: जी
2: मैंने BSc किया, तब तक मैंने लालटेन में और दीपक में पढ़ाई की है।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत ही अभावों में बीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हमें पूरी तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब हम हमारे जीवन की जो स्थिति होती है उसे ही अपना कर बैठ जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बड़े ही अभावों में बीता, आपने लालटेन और उनके बीच में पढ़ाइयाँ की है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें क्या क्या ऐसे संघर्ष रहे, जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को बताइए, ताकि वो भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति को लेकर हताश न होए और जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते रहे।
2: जी मैम, एक्चुअल में बचपन से हम पढ़े, हमारे गांव में पहले दूसरी तीसरी क्लास थी, हम चौथी क्लास भी बाहर बचपन में पढ़ने जाते थे।
1: जी बिल्कुल।
2: और इसके बाद हम दूरस्थ जाते थे, बरसात के मौसम हम कई दफे पानी में गिरते थे, बस्ते भी भीग जाते थे।
1: जी जी।
2: फिर भी स्कूल में जाके दरी पे बैठते थे, दरी भीग जाती थी, ऐसे अभाव थे। उसके बाद भी हम पढ़ के आते थे और हमारे ना तो घरों में लाइटें थी।
1: जी जी।
2: ये भी आपको मैंने पहले बता दिया, अवगत कराया है। तो ऐसी स्थितियों में हम आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर से पढ़ना है, ये मन में ठान लेते हैं और आगे बढ़ना ये तय हो तो निश्चित तौर से अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी अभाव को देखते हुए उस अभाव के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति का विकास रुक जाता है।
1: जी बिल्कुल। सर आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर हम मनुष्य जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी एक जो इंसान है उनके साथ में, जो उनका फ्रेंड ही मान लेते हैं हम, अगर उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं तो वो अपने घर पर आकर उन सारी चीजों का जिक्र करने लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास तो न तो टेबल कुर्सी है, न ही अपने घर पर ढंग से लाइट आती है, न ही हमारे पास पंखा है। तो ऐसे में माता पिता जो होते हैं वो भी बच्चे की उस बात को मान लेते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा आखिरकार सही तो कह रहा है ना, हमारे पास क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उसे दे रहे हैं जो आगे बढ़ा सकती है। तो ये जो सारी चीजें जब माता पिता और बच्चे दोनों ही अपने मन में डाल लेते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही स्थिति में वो रह जाते हैं। तो सर अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शिक्षा का क्षेत्र, जैसा कि आपने बताया कि अभाव थे लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़े, तो बचपन से ही आपकी जो हॉबीज थी वो यही थी कि आपको आगे जाकर किसी सरकारी पद पर ही जाना है, या आप अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते थे?
2: मैम दो बातें तो दोनों थी, लेकिन एक्चुअल में हम BSc निकले।
1: जी जी।
2: और निकलते ही हमारे साथी कुछ पुलिस में फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें कोई एग्जाम नहीं होते थे।
1: जी बिल्कुल।
2: तो सीधा ही लेते थे, हमने पुलिस लाइन नंबर में फॉर्म भर दिया, दूसरे दिन हमारी दौड़ वगैरह हो गई।
1: जी जी।
2: और शाम को हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस कारण से क्या एक्चुअल में हम कुछ आगे नहीं कर पाए पुलिस में आने के बाद, बाकी इच्छाएं तो कहीं न कहीं आगे उच्च पद की प्राप्त करने की थी।
1: जी
2: जो कांस्टेबल में आने से दबी है।
1: जी बिल्कुल,
2: ये निश्चित तौर से है। और आपने एक प्रश्न कहा है कि किसी लोगों की सुविधा बहुत ज्यादा है घर में या नहीं है, अभाव है, तो बच्चों को क्या सुविधा दे सकते हैं? तो बच्चों में जिसको लगन है पढ़ना है वो तो इन बिना टेबल कुर्सी के भी पढ़ सकता है, बिना पंखे के भी पढ़ सकते हैं, और उसको सुविधा देनी है। कई लोग ऐसे हमने सुना भी है कि कई बच्चों रोड की लाइट के खंभे के नीचे भी पढ़ करके अधिकारी बने हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो जिसमें ललक है वो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेगा। साधनों का अभाव किसी की उन्नति में बाधक नहीं होना चाहिए। ये दृढ़ निश्चित हो तो वो निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे युवा साथियों को आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि हमारी जो भी स्थिति है उसमें हम अपनी लगन को, हमारा जो लक्ष्य है उसे सबसे पहले निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर ही अगर हम अमल करते हैं दृढ़ निश्चय करके तो अवश्य हम उस तक पहुंच पाते हैं। तो सर, जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है, इसके साथ हम देखते हैं कि हमारी जो युवा अवस्था होती है, हमारा जब बचपन होता है तब हमारी खेलने कूदने की इच्छा बहुत ज्यादा करती है। हम देखते हैं कि आज हम क्रिकेट खेल लें, वॉलीबॉल खेल लें, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कौन सा खेल पसंद था? क्या अब की जो प्रगति है उसमें कभी आपके जो खेलने की चीजें हैं वो कभी बाधक बनी?
2: गाँव में ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं थी। आज जो क्रिकेट वगैरह की और दूसरे खेलों की बात कर रहे हैं, गाँव में हमारे प्रचलित थे गिल्ली डंडे।
1: जी बिल्कुल।
2: इसके अलावा हमारे पास कीड़ा डोट थी जो संक्रांति से 15-20 दिन पहले शुरू करते थे, गाँव की गलियों में खेलते थे।
1: जी बिल्कुल।
2: ये बहुत ही बढ़िया थे, ये दो गेम हमें बहुत ही प्यारे लगते थे और इसी के आधार पर हम खेलने का मन करते थे, उसी में ज्यादा रुचि थी। बाद में भविष्य में तो हम वैसे मैं रनर भी रहा दौड़ वगैरह में, इसके बाद में जूडो कराटे चैंपियंस में भी रहा, पुलिस विभाग में भी उस समय में मैंने मेडल प्राप्त किए।
1: जी बिल्कुल।
2: लेकिन अब एज 55-56 की हो गई, मैं लगभग 15-20 साल से इन खेलों से दूर हो चुका हूँ।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हम कह सकते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खेल कूद में रह जाते हैं, पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, तो हम खेल कूद के साथ अपनी इच्छाओं को अच्छे से जीते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपके परिचय में आपने हमें बताया था कि आप ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम देखते हैं कि आए दिन अखबार में हमें कम से कम 5-7 खबरें ऐसी मिली जाती है कि जहां पर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं कह सकते हैं कि नियमों का पालन न करने के कारण होती है। तो ऐसे में आप हमारे उन श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
2: जी मैम, ट्रैफिक के बारे में मैं निश्चित तौर से कहूंगा, एक बड़ा ही दुखद विषय है। अकाल मौत एक्सीडेंट में होना
1: जी
2: किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़े सदमे से कोई कम नहीं है। क्योंकि जिसके परिवार में कोई एक्सीडेंट हुआ है, घायल हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या मौत हुई है, वो ही उसकी पीड़ा ज्यादा बयां कर सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: मेरा 30-35 साल से पुलिस में हूँ, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ये जो वाहन चालक है वो ट्रैफिक नियमों का कहीं पालन नहीं करते हैं।
1: जी।
2: इसी कारण से एक्सीडेंट होता है। सडनली कोई एक्सीडेंट होना मैं नहीं मानता।
1: जी बिल्कुल।
2: क्योंकि ट्रैफिक में निश्चित तौर से जो वाहन चालक हैं वो सबसे पहले अगर जैसे मोटरसाइकिल है तो वो हेलमेट का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से वो गिर भी जाएगा तो अपनी जान बचाएगा, क्योंकि हेड इंजरी से मौत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हेलमेट निश्चित तौर से पहने, फोर व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
1: जी जी।
2: अच्छा, वाहन चलाने के लिए 18 साल से अधिक की उम्र का ही व्यक्ति चला सकता है, उसका निर्धारित लाइसेंस 18 साल बाद ही प्राप्त होता है DTO से। तो निश्चित तौर जो 18 साल से कम के बालक हैं, अभिभावक जो हैं वो गलती एक करते हैं, 18 साल से कम के बच्चों को अपनी व्हीकल दे देते हैं और उनको बड़ी बड़ी महंगी आजकल बाइकें देते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: जबकि बच्चा जिद्दी है, मैं मानता हूँ, जिद करके लेते हैं, तो उनकी जिद को कहीं ना कहीं शमन करना चाहिए।
1: जी हाँ।
2: अन्यथा एक दिन आपके घर में भी वही एक्सीडेंट का मातम आएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो यातायात के नियम है उनको निश्चित तौर से माने, सड़क पर आप रॉन्ग साइड नहीं चले, निर्धारित जो गति है उससे वाहन को तेज न चलाए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना ही है। इसके अलावा आप जो से बड़ी गाड़ियां हैं, कोई परिवहन वाहन है, उसमें क्षमता से अधिक सवारियां न बिठाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं।
1: जी जी।
2: वाहन चलाते समय कहीं लोग शराब का सेवन करते हैं, ये बहुत ही घातक है, उसके खुद के लिए भी घातक है और सामने से सही चलने वाले के लिए भी घातक है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनकी गाड़ी भी जब्त करते हैं, वो शराब वाला मामला वास्तव में बहुत ही डेंजर है। इसके अलावा व्हीकल जो है MV एक्ट में है, उन MV एक्टों में बहुत सारे जो प्रावधान है उनका अगर पालन किया जाए तो निश्चित तौर से दुर्घटनाओं में अपन कमी ला सकते हैं। वाहनों में जो फिटनेस वगैरह है ये देखनी चाहिए, RC बीमा निश्चित तौर से करवाया जाना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल।
2: अपने जैसे शहरों में क्या करते हैं, अपना वाहन है वो कहीं कहीं दामर रोड पे खड़ा कर देते हैं, जहाँ दुकान मिली वहाँ खड़ा कर दिया चले जाते हैं, पीछे से कोई स्पीड से आता है तो टक्कर होती है, घायल होता है। तो कृपया शहरों के लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा नहीं करें, पार्किंग स्थल पर करें, दुकानों के सामने तरतीब से वाहन लगावें, रॉन्ग साइड कभी नहीं चले। वाहन चलाते समय एक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही घंटी बजती है तो वो मोबाइल उठाता है, तो निश्चित तौर से वो स्वयं भी गिरता है या सामने वाले के साथ भी टक्कर मारता है।
1: जी बिल्कुल।
2: तो ये जो एक मोबाइल है, शराब पी के चलाना, ये एक्सीडेंट के कहीं न कहीं बड़े कारण हैं। और रॉन्ग साइड चलना ये बड़े हैं, तेज चलना, तो इसके ऊपर अगर अंकुश लगाए तो मैं उसी के ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और लोगों के जो जीवन मौतें हैं उन मौतों के आंकड़ों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। विभाग, पुलिस विभाग भी इसमें लगा हुआ है, परिवहन विभाग भी इसमें लगा हुआ है, फिर भी लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है। हम निश्चित तौर से विद्यालयों में भी इस संबंध में सेमिनार कर रहे हैं। मेरे स्वयं के द्वारा भी अभी प्रतापपुर में गया था, वहाँ विद्यालय में हमने नेल्सन स्कूल है उसमें हमने निश्चित तौर से बालकों के साथ संवाद किया था। और इसके अलावा मैं घाटोल गया, कल मैं कुशलगढ़ जाके आया, लोगों को अवेयरनेस और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी अवेलेबल करा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर।
2: जी मैम।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। हम देख रहे हैं कि आए दिन ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत सी बार हमारी ना समझी की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक वाले, वो हमारे मनुष्य के लिए उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में हम बहुत सी बार अपनी लापरवाही के कारण, जल्दबाजी के कारण ऐसे कुछ कृत्य कर देते हैं। और खासकर अभी हम देखते हैं सर कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जोशीली हो गई है। आजकल उन्हें अलग अलग स्टंट करने होते हैं, अपने आप को कुछ अलग साबित करने के लिए वो कुछ भी सरेआम करते रहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उठाया मैम। आज जो युवा है आज वो कुछ ग्रुप बनाते हैं,
1: जी जी,
2: अपनी बाइक महंगी माता पिताओं से दबाव डालकर खरीदते हैं और इसके बाद उनको बहुत ही तेज गति से चलाना इनका शौक बन गया।

0: युवाओं में एक क्रेज बन गया है, कुछ ग्रुप बना रखे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा जो आज भारत के एक तरह से राष्ट्र निर्माता हैं, और जब भारत का राष्ट्र निर्माता ही युवा अपना अकाल मौत कर लेता है हाथों से अपनी ही गलती से, तो एक दुखद विषय है। इस पर इन युवाओं को भी सोचना चाहिए और इस प्रकार के स्टैंड से बाहर आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता पिता बच्चों को इन सारे संस्कारों को देने में बचपन से ही क्या ऐसी चीजों को अपना सकते हैं। हम देखते हैं कि माँ बाप का इस चीज में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ही जिस तरीके से हम बच्चों को जिस स्थिति में ढालते हैं, जो वो हमारे आसपास के वातावरण में देखते हैं, वही आगे चलकर करते हैं। तो माता पिता इस चीज में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
0: जी मैम, एक्चुअल में होता यही है कि आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे के शौक क्या ना तौर पर माता पिता के ऊपर दबाव डालकर वाहन लाते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और एक दूसरे को कंपटीशन में देखना चाहते हैं। बहुत ही गलत धारणा हो चुकी है। माँ बाप का ये फर्ज होना चाहिए कि सख्ती से मना कर दें और उनको वाहन ना दें। 18 साल का अगर उम्र नहीं हुई है तो उन बच्चों को वाहन कतई ना दें।
1: जी बिल्कुल।
0: इसके अलावा अगर 18 साल हो गई है तो उतने बच्चों का लाइसेंस बनवा लें, वाहन का बीमा करके ही वाहन दें। बच्चे को घर से निकले तो हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, नहीं पहनता है तो स्वयं अगर पुलिस को मिलके इसका चालान करवाएं या गाड़ी जब्त करवाएंगे और आगे आएंगे तो ही इनको बचाया जा सकता है। आज तो हम कोई चालान बनाते हैं हेलमेट का, मैं शहर में हमें उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया, आज हमारे महानिरीक्षक पुलिस लेडीज हैं एस परिमला जी, उनके सख्त निर्देश हैं कि 100% संभाग मुख्यालय होने पर 100% हेलमेट का प्रयोग करेंगे। तो उसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। बिना नंबर वाहन नहीं होना चाहिए शहर में। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, तो आज सिफारिश करते हैं जो उच्च पद पे बैठे हैं, चाहे वो कहीं न कहीं अपने आप को उच्च समझ रहे हैं या कहीं राजनीति में हैं, तो ऐसे लोग सिफारिश करते हैं कि इसका हेलमेट छोड़ दीजिए साहब, आप मत बनाइए, कैसे बनाते हो देख लेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। तो ये कहीं न कहीं उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनकी मौत को बुलावा देते हैं। तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा, जो भी सिफारिश अगर करे तो निश्चित तौर से ये देखे कि वो कल उसकी मौत को आप निमंत्रण दे रहे हैं। इस संबंध में मेरे भाई टीचर है, उसको एक बार चालान बन रहा था पुलिस का और मुझे सिफारिश की, मैंने उसको दो बार बचाया, तीसरी बार जब आया तो मैंने स्वयं कह दिया कि इसका चालान बनाइए, और उसका चालान बना। उसके बाद उसने हेलमेट का प्रयोग किया और दो बार गिरा।
1: जी बिल्कुल।
0: वो वाकई मिला मुझे और कहा चरण स्पर्श करके, भैया आपने अगर मेरा चालान नहीं बनाया होता तो मैं हेलमेट कभी नहीं पहनता।
1: जी बिल्कुल।
0: और आज मैं बच गया।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिफारिश करता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे राजनेता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या कोई भी सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर कोई सिफारिश चालान के लिए करते हुए हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए, नंबर प्लेट नहीं है उसके लिए सिफारिश करते हुए चालान बचाने के लिए, 500,000 रुपया बचाने के लिए, तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप कहीं न कहीं इन रोड एक्सीडेंट में युवाओं की जान जोखिम में डालकर उनकी मौत को बुलावा दे रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, दो बार बचा लेते हैं, निरंतर जान पहचान होने के कारण हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वही समझाइश अगर हम हमारे बच्चों से कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि किस तरीके से उन्हें अपने नियमों का पालन करना है और अपनी जान को बचा कर रखना है।
0: जी मैम, इसमें एक मैं और शब्द कहूंगा, आज शहर में 4-व्हीलर और 2-व्हीलर वाले, अगर कोई रोगी वाहन जाता है, सायरन बज रहा है, उसको साइड देने के बजाय उससे और आगे चलता है, स्पीड करके और आगे चलता है, उसको साइड नहीं देता है। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अगर कहीं पर भी किसी भी रास्ते पे, चाहे शहर हो, आम सड़क हो, हाईवे हो, अगर आपको सायरन बजता हुआ कोई गाड़ी रोकी की दिखती है या अग्निशमन की दिखती है, तो उनको तत्काल आपकी गाड़ी साइड में रोकें, ब्रेक करें और उनको आगे जाने का मौका दें। रोगी वाहन से किसी की जान बचाई जा सकती है, और अग्निशमन से कहीं आगे कोई अग्नि हो रही है, कहीं अग्निकांड हुआ है, कोई जान जल रही है या कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको अतिशीघ्र बचाया जा सके। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये रोगी वाहनों को और अग्निशमन को तत्काल रास्ता दे साइड में खड़े करके।
1: जी बिल्कुल जी। तो सर, जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे बहुत अच्छी चल रही है, इसी बीच हमारे टीम साथी कमलेश पुनकर जी भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे।
2: जी मैम। जी सर
0: नमस्कार।
2: सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है वागड़ रेडियो में। सर एक कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि हमारा वागदरा संस्थान का विजन रहा है कि सच्चा बचपन, तो आजकल अधिकांश जो वाहन होते हैं फोर व्हीलर वाहन, वहाँ पर काली फिल्म की पट्टियाँ लगी होती हैं, और अवैध पट्टियाँ भी अगर जैसे कि आपने पूर्व

0: भी वार्ता में बताया कि जो बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं तो अपनी गाड़ी के आगे बोर्ड लगा देते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वास्तव में यातायात के तौर पर आप प्रभारी हो बांसवाड़ा के, उस पर इस दिशा में क्या कार्यवाही वर्तमान में हो रही है।
1: बिल्कुल आपका सही कहना, जिनकी भी काली फिल्में हैं उसमें एक निर्धारित रखा है, रेशो है कि इतनी अंधापा वो उसका है, रेशो है, उस रेशो के अनुसार जो है तो उसको तो लगेगी, बाकी अगर ब्लैक ज़्यादा है निर्धारित रेशे तो उनको हम तुरंत हटवाते हैं और उसका जुर्माना भी करते हैं। वी एक्ट के तहत 200 रुपया जुर्माना है, मौके पर ही जुर्माना करके मौके पर ही हटवा रहा हूँ। लेकिन कुछ बड़े लोग होते हैं, मेरी गाड़ी को कैसे हाथ मारा करके सिफारिश कराते हैं, तो मैं कहीं दफ़े सिफारिश को अनसुना करता हूँ, तो हो सकता है मेरे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी जीवन को बचाने के लिए अनसुना करता हूँ। और कहीं ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका कभी चालान नहीं कटा और सिफारिश कराते हैं, मैं वहाँ तक पहुँचे मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सिफारिशों को रोक लें और निर्धारित शुल्क आप जमा करें जो उस राजकोष में जाएगा, और आप भी इसी कारण से कि चालान कटता है तो आगे से आप यातायात नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, अन्यथा आप हमेशा ये कहेंगे कि मेरे जेब में तो सिफारिश का तुक्का पड़ा हुआ है, इक्का पड़ा हुआ है, और इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए चलेंगे। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि जो भी सिफारिश करवाता है और इक्के को बाहर निकालता है वो कृपया स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और इक्के को बाहर निकालने की प्रवृत्ति को बंद करें।
0: जी बिल्कुल। कार्यक्रम के अंत में सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप आज की इस चर्चा को लेकर हमारे श्रोता साहित्य के कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
1: वाग्दरा संस्थान द्वारा एक तो मैंने सुना है जहाँ तक कि एक सच्ची खेती के बारे में, जो केमिकल मुक्त खेती करवाने के बारे में जोर देते हैं
2: जी,
1: और मिलेट जो बड़े अनाज हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, देसी खाद से पुरानी पद्धति से खेती करने पे बहुत जोर देते हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं, वाकई आपका कार्य बहुत तारीफ काफिल है। तो इसके बाद सच्चा स्वराज का भी आप जो कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को नियमों का पालन कराना और उनको स्वराज के प्रति जागरूक करना, और एक सच्चा बचपन के बारे में मैंने सुना आपका कि जो 0 से 18 वर्ष के बालक हैं निःशुल्क आरटीआई के तहत शिक्षा प्राप्त करने के हैं, सरकारी योजना का जो लाभ है, उस समय आप इन बच्चों के बारे में सच्चा बचपन जो चला रहे हैं, 2-3 पॉइंट मैंने जो सुने हैं वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज का बचपन कहीं न कहीं शहरों में किसी नशाखोरी में विलुप्त हो चुका है, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है और उनके अभिभावक स्वयं भी इस ओर विशेष ध्यान दें और अपने बालकों को सही दिशा में प्रेरित करें, थोड़े सख्त हों, चाहे बच्चा जिद करे तो उस शक्ति के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए।
2: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी एंड कमलेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बांसवाड़ा वासियों को एक ही निवेदन करूंगा कि जो रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं उसको कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस बांसवाड़ा को सहयोग करें, सिफारिश से ना करावें। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जैसा कि श्रोता साथियों अभी हमारे कार्यक्रम में यातायात अधिकारी जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं कि अगर हमें हमारे जीवन को बचाकर रखना है, हमारे घर परिवार और देश के लिए कुछ करना है, तो हमें जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन अवश्य करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातें रही हैं वो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ साथियों आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारे मेहमान वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा तो वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है। अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज्यादा साहस की अपेक्षा रखता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में।
1: हाँ।
0: जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हमने जाना था सांप्रदायिक सौहार्द में ढेर सारी बातों को, इसी के साथ इसी प्रकरण में आगे बढ़ते हैं कशिश। तो श्रोता साथियों, बाल्यकाल से ही ऐसा नहीं लगा कि गांधी जी के मन में हिंदू और मुसलमानों को लेकर भेदभाव था। जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत जाने को निकले, तब उनको विदा देने के लिए 8-10 मित्रों में से 3-2 मुसलमान थे। अफ्रीका में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों और इस्लाम का आदर पूर्वक अध्ययन किया था। उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जिस निष्कर्ष पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने निजी अनुभव के आधार पर पहुंचे थे। वह सार यह था श्रोता साथियों कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की उपासना के माध्यम से प्रकट होते हैं और मनुष्य मात्र सीमित शक्ति का होता है, इसलिए प्रत्येक धर्म में न्यूनाधिक अंश में थोड़ा अधूरापन रहेगा ही। इसी से वे धर्म परिवर्तन को अनावश्यक मानते थे, जबरन या लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को अधार्मिक मानते थे। दक्षिणी अफ्रीका के उनके आश्रमों में कौमी एकता का ऐसा सुंदर वातावरण था कशिश कि वहाँ वैष्णव जन भजन, कभी मुस्लिम जन तो कभी ईसाई जन तो कभी जरथुस्ट्री बड़े ही प्रशासनिक ढंग से गाते और सारे आश्रमवादी उत्साह पूर्वक उसका अनुसरण करते। वहाँ के सत्याग्रह में अपनी संपत्ति को हंसते हंसते समर्पित कर देने वाले मोहम्मद कालंचिया जैसे साथी उनको मिले थे। इमाम साहब की बेटी के निकाह की पत्रिका गांधी जी के नाम से छपी थी, उनमें उन्होंने इमाम साहब के लिए मेरा सहोदर जैसे शब्द प्रयोग में लिए थे।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों भारत आने के बाद गांधी जी ने पहली बार मुंबई में ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और पारसियों के साथ अन्य संप्रदाय के लोगों का झगड़ा देखा था। उस समय उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर जैसों ने प्राण जोखिम में डालकर दंगा शांत कराने का काम किया था अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: अंततः गांधी जी के उपवास से शहर में शांति स्थापित हुई थी। वहीं हम देखेंगे जब गांधी जी ने 1924 में दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में रहते हुए 21 दिन के उपवास किए थे, उस समय अली बंधु उनकी माँ के अलावा डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खान जैसे लोग दीन बंधु एंड्रोज और पंडित मनमोहन मालवीय की भांति ही बराबर खड़े रहकर उनकी जबरदस्त सेवा करते थे।
0: बिल्कुल,
1: तब से श्रोता साथियों सर्वधर्म प्रार्थनाएं सभाएं अधिक प्रचलित हुई थी। गांधी जी के आश्रमों में ऐसा वातावरण था कि इस लेखक को स्वयं काफी बड़े होने तक इस बात का भान नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: कि उनके मित्रों में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन सवर्ण और कौन अवर्ण था। गोलमेज परिषद में जब गांधी जी ने ऐसा विधान किया कि इस परिषद में आए लोग तो सरकार ने चुन चुन कर निमंत्रित किए हैं, ये किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तब किसी ने उनसे पूछा था कि कांग्रेस कितने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी ने कहा था कि उसका उत्तर जानना हो तो भारत की जेलों में जाकर आजादी के आंदोलन में जेल गए लोगों की सूचियां देख लो। गांधी जी द्वारा हाथ में लिए गए रचनात्मक कार्यों में से शायद ही अंजलि जी ऐसे कुछ थे जो संपूर्ण समाज का स्पर्श न करते हो।
0: बिल्कुल,
1: खादी ग्रामोद्योग, मजदूर प्रवृत्ति, ग्राम स्वास्थ्य, राजभाषा और स्वच्छता जैसे बहुत से कार्यक्रम ऐसे थे जो किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर संपूर्ण समाज की सेवा में समर्पित थे। जिसका परिणाम साथियों गांधी जी का समाज के प्रत्येक वर्ण या वर्ग के साथ आत्मीय संबंध बन जाता था।
0: बिल्कुल कशिश, गांधी जी की सेवा करने की एक रीति प्रत्येक वर्ण या वर्ग को अपनी कमी या त्रुटि की तरफ उंगली का संकेत करना भी था। वे जिस तरह से उस समय के समाज में भयभीत हिंदुओं को अपने मन के भीतर की कायरता को निकाल बाहर रखने को कह सकते थे, उसी तरह मालवियों की गुंडागिरी को भी ललकार कर निकाल सकते थे। अस्पृश्यों को वे मृत पशु का मांस खाने की आदत छोड़ने को कह सकते थे, तो वे सवर्णों को यह भी कह सकते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा कलंक है। उनका ऐसा अनुभव था कि मनुष्य मन में कटुता रखे बिना अप्रिय सत्य भी कह सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में सांप्रदायिक सौहार्द प्रकरण की ओर। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले ढेर सारी बातें रही थी और बताया था कि गांधी जी का ऐसा अनुभव था कि मनुष्य मन में कटुता रखे बिना अप्रिय सत्य भी कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इसी के आगे अगर बात करें तो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में कट्टरपंथी गांधी जी से नाराज थे। इसका एक कारण यह था कि यदि वे उनमें से अनेकों के स्थापित हित पर ही प्रहार करते थे तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दोनों पक्षों में ऐसे लोग अधिक होंगे जो गांधी जी की अप्रिय सत्य को झेल न सके हो।
1: जी जी
0: दोस्तों, कतिपय उज्जवल अपवादों को छोड़ते हुए बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मतभेद रखने वाले दलों के साथ सामान्य राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार करते थे। अतः अंजलि जी, उनके कथन और व्यवहार में जो अप्रिय सत्य प्रकट होता था वह जरा सा भी कटुता रहित होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। गांधी जी को स्वराज प्राप्ति के अपने लक्ष्य के लिए कांग्रेस का एक उपकरण के बतौर उपयोग करना पड़ा था।
1: जी जी,
0: इससे कांग्रेस का दोष बहुधा गांधी जी पर मढ़ा जाता है। गांधी जी वैसे तो पूरे देश के दोष को अपना ही दोष समझते थे। इसी से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं द्वारा लीग या जिन्ना के साथ किए गए अहंकार मिश्रित व्यवहार का दोष अपने ऊपर ही मढ़ा गया।
1: बिल्कुल,
0: तो उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था।
1: बिल्कुल कशिश, 1944 में जिन्ना के साथ असफल वार्तालाप के पश्चात गांधी जी ने कौमी सवाल को लेकर जो काम किए थे वे सब व्यक्तिगत हैसियत से ही किए थे। उन्होंने ये कार्य बड़े राजनीतिक नेता के रूप में दो कौमों के बीच समाधान कराने वाले के रूप में नहीं वरन एक शांति सैनिक के रूप में किए थे। वैसे गांधी जी की ये दोनों भूमिकाएं अलग अलग थी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सीधी कार्रवाई के बाद गांधी जी कलकत्ता, नोआखाली बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, फिर दिल्ली गए। नोआखाली पहुँचे तब वह उपद्रव हो चुका था।
0: जी हाँ,
1: पर कलकत्ता और दिल्ली में वे थे तब उपद्रव चालू हुआ था। नोआखाली और बिहार में प्रत्यक्ष हिंसक कृत्यों को रोकने का काम उनके हिस्से नहीं आया। दंगों के शिकार बने हजारों परिवार के आंसू पोंछने, संपूर्ण क्षेत्र में निर्भयता का वातावरण बनाने, दंगा कराने वाले लोगों के मन में पश्चाताप का भाव पैदा करने या घर बार छोड़कर भाग जाने वाले इकाइयों को वापस लौटाने की प्रेरणा का काम उन्होंने ही किया था।
0: बिल्कुल,
1: कलकत्ता और दिल्ली में उन्होंने आमरण अनशक करके अपने प्राण दांव पर लगाकर महानगरों की अशांति मिटाई थी। उनके उपवास से प्रेरित होकर अनेक सेवक शहर की गली गली में घूम आए थे। कलकत्ता और दिल्ली में श्रोता साथियों, गांधी जी ने अशांति के समक्ष अपने जीवन की बाजी ही लगा दी थी। उन्होंने शहर में शांति नहीं होती तब तक अनशन करने की घोषणा की थी और इसकी घोषणा किए जाने से पहले ही खाना लेना छोड़ दिया था। उनकी शांति के लिए गांधी जी प्राण देने को तैयार हो गए हैं यह देखकर लोग स्तंभित हो गए। लोग सोचने लगे कि गांधी जी अनशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कलकत्ता में तो जिन्होंने गुंडागर्दी की थी उनके गृहणियों ने भी अंत्याग कर दिया था। गांधी जी अनशन करे और हमसे ग्रास गले नीचे कैसे उतरेगा। दंगा करने वाले यह देखकर पछताए। उन्होंने अपने काम में लाए और इकट्ठे किए हथियार लाकर गांधी जी के चरणों पर रख दिए।
0: बिल्कुल,
1: दिल्ली में होटल वालों और खाना बनाने वालों ने खाना पकाना बंद रखा। सभी दलों के लोग गली गली घूम गए। लाखों लोगों ने शांति प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। जिन निराश्रितों के क्रोध के कारण अशांति फूट निकली थी उनमें से हजारों ने गांधी जी के साथ चुपचाप उपवास शुरू किया। दोनों महानगरों के राजनीतिक नेताओं के शहर में अशांति नहीं हो पाई। ऐसी गारंटी देने के बाद गांधी जी ने उपवास तोड़ा। कलकत्ते में स्थापित शांति देखकर गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने गांधी जी को एक पत्र में लिखा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं और विशाल स्तर पर वहाँ दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हमारा दल एक ही आदमी का बना है और वहाँ बिल्कुल दंगे नहीं। एक फौजी अधिकारी की तरह साथ ही एक प्रशंसक की तरह एक आदमी के सीमा दल को मेरी ओर से बधाई देने दे। इस प्रकार गांधी जी की कौमी एकता के लिए प्रयास देश के विभाजन को रोकने में निष्फल रहे थे। उसके एक से अधिक कारण थे परंतु एक व्यक्ति के रूप में और एक शांति सैनिक के रूप में गांधी जी ने इतनी सफलता पाई कि जिसके जोड़ इतिहास में शायद ही नहीं मिल सके।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो श्रोता साथियों ये तो हमारी आपसे बातें रही सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का अंतिम गीत सुन लेते हैं।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी जी।
0: अगले रविवार को हमारी आपसे मुलाकात होगी नए प्रकरण, जिसमें हम जानेंगे रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में। लेकिन आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए। इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में एक नए प्रकरण से जुड़ी ढेर सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
5: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
6: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और हाजिर हो चुकी हूं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नई व्यंजन विधि के साथ में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, हमारी आपसे हर रविवार को मुलाकात होती है एक नए व्यंजन विधि के साथ में। तो श्रोता साथियों, आज भी एक ऐसी ही व्यंजन विधि को लेकर कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यंजन विधि मैं आपको बताने वाली हूँ वो है खीरा और पुदीना का रायता। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि खीरा और पुदीना रायता गर्मियों के मौसम में बहुत लोकप्रिय और स्वास्थ्य वर्धक व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ठंडक पहुँचाने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। श्रोता साथियों, जून जुलाई जैसे गर्म महीनों में इसका सेवन विशेष रूप से हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम में जरूर बताऊंगी इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए होगी और किस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, तो ढेर सारी बातें जरूर होंगी। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले मैंने आपको हमारे आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत यानी कि व्यंजन विधि के बारे में तो बता ही दिया था कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम घर पर खीरा पुदीना रायता कैसे बनाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले साथियों, आपको ताज़ा दही लेना है 2 कप, खीरा लेने हैं 2 मध्यम आकार की, साथ ही साथियों आपको ताजी पुदीना की पत्तियाँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लेनी है, भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है आपको 1 चम्मच, काला नमक लेना है आपको छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, साधारण नमक आपको लेना है वो भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, काली मिर्च लेनी है आपको 1 छोटी चम्मच, हरा धनिया लेना है 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ, बर्फ के कुछ टुकड़े भी आप ले सकते हैं। तो श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि खीरा और पुदीना का रायता बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब यही बात आती है हम इसे बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाएं। तो साथियों, सबसे पहले विधि की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले खीरे को अच्छी तरह से धो ले। यदि खीरा मोटे छिलके वाला हो तो उसे हल्का सा ऊपर से छिल डालें। इसके बाद आप खीरे को कद्दूकस कर लें। साथ ही श्रोता साथियों, आपको दही को 1 बड़े बर्तन में लेकर अच्छी तरह से फेंट कर लें ताकि वो चिकना और मलाईदार हो जाए। फेंट किए हुए दही में कद्दूकस किया हुआ खीरा, बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां और हरा धनिया डाल लें। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाली, साधारण नमक डाली और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। रायते को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिए साथियों। ठंडा होने के बाद इसे भोजन के साथ आप परोसें। श्रोता साथियों, ये तो हमने बात की खीरा और पुदीने का रायता बनाने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको खीरा और पुदीना रायते के स्वास्थ्य लाभ बताना चाहूंगी। श्रोता साथियों, इससे हमें कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इससे हमारे शरीर को ठंडक पहुँचती है। खीरा और पुदीना दोनों की तासीर ठंडी होती है। यह गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान संतुलित रखने में सहायता करते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, खीरे में लगभग 95% पानी होता है जिससे शरीर में पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी नहीं रहता है। दही, खीरा और पुदीना में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। यह कम कैलोरी वाला होता है और पेट भरने वाला व्यंजन है, इसलिए श्रोता साथियों, ये हमारे वजन को भी नियंत्रित करता है। साथ ही बताना चाहूंगी साथियों कि यह हमारे त्वचा के लिए भी लाभकारी है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। खीरे में कैल्शियम पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। ये तो श्रोता साथियों, मैंने आपको बताया कि इसके लाभ क्या है, यही मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ सावधानियों के बारे में, जैसे कि हमेशा ताज़ा दही और ताजे खीरे का आप उपयोग करें। साथ ही श्रोता साथियों, अधिक खट्टे दही का प्रयोग ना करें। रायते को लंबे समय तक कमरे के तापमान में न रखें। अगर घर में किसी को अधिक सर्दी जुकाम है तो ठंडा रायता खाने से बचें। साथ ही श्रोता साथियों, आपको कहना चाहूंगी कि खीरा पुदीना रायता स्वाद, पोषण और स्वास्थ्य का बेहतरीन संगम है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, पानी की कमी को दूर करता है और साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसीलिए इसे नियमित भोजन में शामिल करना एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। तो जैसा कि दोस्तों, ये व्यंजन विधि तो हमारी आपसे पूरी हुई, अब और आगे मुझे एक और व्यंजन विधि के बारे में बताना है, तो वो तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले हमने एक स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के बारे में जाना था, जो कि थी खीरा और पुदीना का रायता। अब यही साथियों एक और स्वादिष्ट व्यंजन विधि के बारे में बताना चाहूंगी, और वो है पपीता और अनार का सलाद। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पपीता और अनार का सलाद एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और रंग बिरंगी रेसिपी है। यह सलाद विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। गर्मियों के मौसम में यह शरीर को ऊर्जा देती है, पाचन सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। अब यही बात आती है, इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। तो श्रोता साथियों, सामग्री की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक पका हुआ पपीता लेना है 2 कप, जो कि कटा हुआ होना चाहिए। अनार के दाने लेने हैं 2 कप। खीरा लेना है 1 बारीक कटा हुआ। नींबू का रस लेना है 1 बड़ा चम्मच। काला नमक लेना है आपको 1 छोटा चम्मच। भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है आपको 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च लेनी है आपको 1 छोटी चम्मच। पुदीना की पत्तियां लेनी है आपको 1 बड़ा चम्मच, जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए। हरा धनिया लेना है आपको 1 बड़ा चम्मच। श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि पपीता और अनार का सलाद बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। यही मैं आपको विधि के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले

कौन सी विधि का उपयोग करना है। साथ ही श्रोता साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी, पपीता और अनार के सलाद के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पपीता और अनार दोनों विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, रक्त की गुणवत्ता सुधारने में भी ये सहायक हैं। अनार आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, जो रक्त निर्माण में सहायता करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथियों, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभकारी है और हमारी त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाता है, हमारे वजन को नियंत्रित रखता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। पपीते में पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो गर्मियों में शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। साथ ही श्रोता साथियों, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी, अधिक स्वाद के लिए इसमें सेब, अमरूद या संतरे के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। सलाद को ताजा बनाकर तुरंत सेवन करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए इसे रंगीन कटोरी में आप परोस सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी, पपीता और अनार सलाद स्वाद और स्वास्थ्य का बेहतरीन मेल है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा देता है और गर्मियों में ताजगी बनाए रखता है। नियमित रूप से इस सलाद का सेवन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में सरल और प्रभावी कदम हो सकता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपके अपने साथी मनीषा पटेल को। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
4: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हूं या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल हूं ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागड़ रेडियो 90.8 FM प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हाँ साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, गणतंत्र का वंदन करता चले लोकतंत्र सरकार भारतीय संविधान को नमन करते हैं बारंबार।
1: जी हाँ, सर्वधर्म समभाव एकता संप्रभुता संविधान, हर नागरिक भाग्य विधाता शील राष्ट्र विधान।
0: जी हाँ, न्याय व्यवस्था कार्य प्रणाली अनूठी और बेजोड़, हर दोषी को दंड मिले कानून का मुश्किल तोड़।
1: देश प्रेम की धाराएं हो बेरी की हर कोशिश बेकार, मैं भारत के संविधान को नमन करता हूँ बारंबार।
0: जहाँ देश हित राष्ट्र प्रेम की अलग जगाई जाती, सीमा पर तैनात सिपाही रणभेरी बजाई जाती,
1: आम आदमी रहे चैन से जनता को मिले अधिकार, प्रतिभाओं की पूजा जहाँ प्रेम मधुर मिले व्यवहार,
0: कीर्ति पताका जग लहराए दिलों में पलता प्यार, हम भारत के संविधान को नमन करते हैं बारंबार।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने जाना था, भारतीय संविधान के रोचक किस्सों में हम जान पाए थे क्या संविधान भारतीय संविधान है। इसी के साथ हमने जाना था संविधान सभा से राष्ट्रद्रोह को हटाया, और हमने जाना था अच्छा संविधान सफल होगा यदि कुछ चीजें मानी जाए तो। इसी के साथ हमने जाना उद्देशिका में ईश्वर, देवी और महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं आया।
1: बिल्कुल,
0: यही आज बात करते हैं। आम भारतीयों ने दिए थे संविधान के मसौदे पर सुझाव।
1: जी हाँ अंजलि, अगर इस पर जाने तो 21 फरवरी 1948 को संविधान मसौदा समिति की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा संविधान सभा के सभापति या अध्यक्ष कहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। इस पर सरकार के विभागों और राजनीतिक दलों में तो संवाद हुआ ही, लेकिन साथियों संविधान के मसौदे को छाप कर पूरे देश में प्रसारित भी करवाया।
0: जी बिल्कुल।
1: इतिहासकार और एशियाई अध्ययन विभाग हेफा इसराइल की ऑर्नित शानी ने अपने एक शोध पत्र में लिखा है कि इसके बाद कई व्यक्तियों और समूह ने संविधान सभा को अपने सुझाव और विचार भेजे।
0: जी जी।
1: कई लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते थे।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि वेद प्रचार मंडल ने तो अंतर जातीय भोज और विवाह राज्य के द्वारा किसी धर्म की स्वीकार्यता पर प्रतिबंध सरी के प्रस्तावों के साथ संविधान का एक प्रारूप ही जमा किया था। एक सज्जन के वी सुंदरेशा अय्यर चाहते थे कि पारंपरिक व्यवहार में राज्य का दखल न हो, यहाँ तक कि छुआछूत के व्यवहार में भी। इतना ही नहीं, संविधान सभा की बहस और कार्यवाही पर छोटी छोटी पुस्तकाएं भी बनाई गई।
1: बिल्कुल अंजलि, और यही अगर संविधान सभा में जम्मू कश्मीर और संविधान के बारे में हम जाने तो संविधान सभा के 4 सदस्य ऐसे थे जिन्हें 2 संविधान सभाओं में होने और 2 संविधान बनाने की भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये थे शेख अब्दुल्ला, मोतीराम बेगरा, मिर्जा अफजल बेग और मौलाना मोहम्मद मसूदी।
0: जी जी।
1: साथियों, भारत की संविधान सभा के 4 सदस्य भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 22 जनवरी 1950 को सभा के अन्य सदस्यों के साथ थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान भी बनाने का अधिकार दिया गया था। इस काम में शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर से ही सहायता मांगी थी।
0: जी जी।
1: लेकिन साथियों, इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना था कि भारत में जम्मू और कश्मीर का रिश्ता क्या होगा, रियासत की भूमिका क्या होगी।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि 27 अक्टूबर 1950 को शेख अब्दुल्ला के दल जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत सरकार से वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठित करने के लिए संयोजन करने का प्रस्ताव पारित किया। अगस्त और सितंबर 1951 में वहां चुनाव हुए और सभी 75 स्थान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते।
1: जी हाँ।
0: 31 अक्टूबर 1951 को श्रीनगर में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने घोषणा की कि निश्चित शर्तों के अधीन जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। श्रोता साथियों, संविधान सभा की तरफ से यह घोषणा होना बहुत ही महत्वपूर्ण था।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने संविधान बनाने की ठीक वही पद्धति अपनाई जो भारत ने अपनाई थी। उसी तरह की समितियां बनाई गई और समितियों की रिपोर्ट चर्चा और निर्णय के लिए संविधान सभा में रखी गई। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बैठकें 5 सालों में 56 दिनों चली और 19 नवंबर 1956 को जम्मू और कश्मीर ने अपना संविधान स्वीकार किया।
1: बिल्कुल।
0: यह संविधान घोषणा करता है कि जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा।
1: जी हाँ। तो जैसा कि अंजलि हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। आगे हम बताएंगे कि सिखों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कैसे किया था, हाथ से कैसे लिखा गया था संविधान। साथ ही हम हमारे श्रोता साथियों को बताएंगे भारत के संविधान में 5000 सालों के इतिहास के चित्रण के बारे में।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम जानेंगे संविधान सभा की कार्यवाही पर कुल व्यय और उसके दर्शकों के बारे में।
0: जी बिल्कुल। तो बातें तो ढेर सारी होंगी, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि कार्यक्रम में जागृति जी बातें बहुत अच्छी चल रही है और आपने कहा था कि गीत के बाद हम जानने वाले हैं सिखों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की संविधान सभा के लिए सिख समुदाय के लिए जितने स्थानों का निर्धारण किया था उससे सिख नेता नाराज थे। 25 मई 1946 तथा 10 जून 1946 को सिख पथिक कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट मिशन योजना से असहमति जताते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन 10 अगस्त 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देते हुए सिखों से संविधान सभा में शामिल होने का अनुरोध किया। फिर संवाद के बाद 14 अगस्त 1946 को सिख पंथिक प्रतिनिधि बोर्ड ने कांग्रेस के आश्वासन पर संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया।
1: जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। और अगर हाथ से लिखे गए संविधान के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों से बात करें तो भारतीय संविधान के पूरी तरह तैयार होने के बाद इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखवाई गई थी।
0: जी जी।
1: संविधान की इस हस्त लिखित प्रति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया था। हाथ से लिखे गए दस्तावेज में कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ तक कि स्याही का कोई अतिरिक्त बिंदु भी नहीं गिरा दिखाई देगा। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब मानदेय की आवश्यकता के बारे में पूछा अंजलि, तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, ईश्वर की अनुकंपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से खुश हूँ। बस एक अपेक्षा है, संविधान के हर पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का भी नाम लिखूंगा।
0: जी बिल्कुल।
1: संविधान की मूल प्रतियों पर सबसे आखिरी पृष्ठ पर लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, पौत्र श्री राम प्रसाद रायजादा सक्सेना।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें भारत के संविधान में 5000 सालों के इतिहास के चित्रण की, तो साथियों भारत का संविधान भारत के इतिहास और संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है।
1: बिल्कुल।
0: एक तरफ तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव की मंशा इसकी उद्देशिका में दर्ज है जागृति जी, तो दूसरी ओर संविधान के हर भाग पर भारत के इतिहास की संकेत के रूप में एक चित्र उकेरा गया है।
1: बिल्कुल।
0: ये 22 चित्र बनाए थे शांति निकेतन के नंदलाल बोस तथा वहाँ के कलाकारों ने, और ये 22 चित्र 12 विषय के परिचायक हैं। मोहनजोदारो काल, वैदिक युग, महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत, महान जनपद और नंदकाल, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का काल, भारत की स्वतंत्रता का क्रांतिकारी संघर्ष और भारत का प्राकृतिक स्वरूप, जिसमें स्थापत्य कला और प्राकृतिक विविधता के चित्र हैं। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, बुद्ध, अर्जुन और कृष्ण, शिवाजी, महावीर, नटराज, अकबर, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान के भी चित्र हैं। श्रोता साथियों, संविधान के प्रस्तुत की साज सज्जा में ब्यौरा राम मोहन राय सिन्हा ने भी अहम भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने भारत के संविधान में 5000 सालों के इतिहास के चित्रण के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया, यही हम जानते हैं संविधान सभा कार्यवाही पर कुल व्यय और उसके दर्शक के बारे में।
0: जी बिल्कुल।
1: साथियों, 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान सभा में संविधान को अंगीकार किया गया, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा को बताया कि लगभग 3 साल तक चली संविधान सभा की प्रक्रिया पर कुल 63,96,721 रुपए का व्यय आया। जब संविधान बन रहा था तब लगभग 53,000 लोगों ने दर्शक दीर्घा से उस प्रक्रिया को देखा।
0: जी हाँ।
1: PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार संविधान सभा में हुई बहसों चर्चाओं में लगभग 36 लाख शब्द बोले गए थे। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 2,67,544 शब्द बोले गए, क्योंकि उन्हें संविधान सभा में उठाए गए हर प्रश्न और प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्तावों पर जवाब देना था।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी के साथ मसौदा समिति के अन्य सदस्य TT कृष्णामाचारी द्वारा 97,638 शब्द, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा 61,162, KM मुंशी द्वारा 60,056, N गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा 56,025, मोहम्मद सादुल्ला द्वारा 19,868, देवी प्रसाद खितान द्वारा 4,927, इन माधव राव द्वारा 3,046 और BL मित्तर द्वारा 2,811 शब्द बोले गए थे।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, अगर यही बात करें संविधान सभा के सदस्यों में
1: एचवी कामत ने 188,749 शब्द, नजीरुद्दीन अहमद ने 146,645, केटी शाह ने 121,825, शिब्बन लाल सक्सेना ने 114,268, ठाकुरदास भार्गव ने 103,775, आर के सिंधवा ने 88,595 शब्द, जवाहरलाल नेहरू ने 73,804, पी एस देशमुख ने 69,557, हृदयनाथ कुंजरू ने 69,158 शब्द और एम अंतशयनम आयंगर ने 55,357 शब्द बोले। संविधान सभा की महिला सदस्यों में जी दुर्गाबाई ने 22,905 शब्द, बेगम एजाज रसूल ने 10,480 शब्द, रेणुका रॉय ने 10,312 शब्द, पूर्णिमा बनर्जी ने 9,013 शब्द, दक्षायणी वेला युद्धन ने 4,415 शब्द, एनी मेस्करिन ने 2,970 शब्द, सरोजनी नायडू ने 2,342 शब्द, हंसा मेहता ने 1,837 शब्द, विजयलक्ष्मी पंडित ने 1,164 शब्द और अम्मू स्वामीनाथन ने 1,066 शब्द बोले थे।
0: जी हाँ, इसी तरह हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही पर कुल व्यय और उसके दर्शक का क्या क्या था वो हमने आपको साझा किया।
1: जी बिल्कुल,
0: अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। अगले रविवार कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
6: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
7: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
8: हिंडो स्कूल जा, अपड़े अपड़ा भी अपना पूरा करो।
6: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
7: होवे
1: જૈવરે સપસોરા ભણેગા તારે તો દેશ અગાડી વધેગા. શિક્ષા નહીં તો સપના અધૂરા. શિક્ષા હૈ હર બચ્ચે કા પૂરા હક. વાગડ રેડિયો વાગધારા સંસ્થા દ્વારા જનહિત મેં પ્રસાર.

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज के सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी आज की संध्याकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना से। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, जिसमें आप जानेंगे महान व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जिन्होंने अपने विचारों से दुनिया को एक नई दिशा दी है। इसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 5:30 पर। दोस्तों, इसी के बाद अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायी और शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सभी सुन पाएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में ठीक शाम 6:00। दोस्तों, फिर हमारा अगला कार्यक्रम होगा बच्चों के लिए शिक्षाप्रद व प्रेरणादायी कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 6:30 पर। साथियों, इसी क्रम में हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारे मेहमान से, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक शाम 7:00। इसी के बाद दोस्तों आपको रूबरू करवाएंगे गांधी जी के विचारों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हिंद स्वराज, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 7:30 पर। साथियों, फिर हम रुक करेंगे हम और हमारा संविधान कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक शाम 8:00। साथियों, इसी के बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, जिसमें हम जानेंगे कुछ स्वास्थ्यप्रद व्यंजनों की विधि के बारे में। इसी बीच कुछ फिल्मी नगमे सुनवाएंगे आपको मनोरंजन के लिए। दोस्तों, इन नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी और दर्द भरी गजलों को ठीक रात्रि 9 से रात्रि 10 बजे तक।

तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सभा की कार्यक्रम आराधना से।

मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हंग्र अपनावी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: सेहत नो राज हूँ है बोन असल आदत ने सही खुराक है बोन जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह होवे सेहत है असली धन आपरो आज जीवन नो सहारो है आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ 14 करोड़ जितनी बहुत बड़ा

0: नंबर है ना, पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, कवि की कलम वह शक्ति है जो दिलों को बदल सकती है। जहां भावनाएं शब्द बनती हैं, वही कवि का जन्म होता है।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो बाग रेडियो 90.8 FM। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: साथियों, जैसा कि महापुरुषों की प्रेम गाथा में हम हर रविवार को हाजिर हो जाते हैं एक महापुरुष के जीवन परिचय को लेकर, तो जागृति जी, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिसने बहुत कम उम्र में साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
0: बिल्कुल,
1: एक ऐसा कवि जिसकी कविताओं में संघर्ष था, सपने थे, समाज के प्रति चिंता थी और आम आदमी के जीवन का दर्द भी था। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध बंगला कवि सुकांत भट्टाचार्य की। श्रोता साथियों, सुकांत भट्टाचार्य का जीवन भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी साहित्य विरासत इतनी विशाल है कि आज भी उन्हें आधुनिक बंगला कविता के सबसे प्रभावशाली कवियों में गिना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: उनके जीवन और साहित्य योगदान के बारे में आज कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि सुकांत भट्टाचार्य के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को हम अवगत करवाएं, तो श्रोता साथियों, जैसा कि अंजलि ने बताया था कि ये बंगला साहित्य के उन महान कवियों में गिने जाते थे जिन्होंने बहुत कम आयु में साहित्य जगत पर अमिट छाप छोड़ी।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें जन कवि और विद्रोही युवा कवि के रूप में भी जाना जाता था। उनकी कविताओं में श्रमिक, किसान, गरीब तथा शोषित लोगों के संघर्ष का सशक्त चित्रण मिलता है। अंजलि
1: जी, जी
0: मात्र 21 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने बंगला साहित्य को अमूल्य कृतियां प्रदान की। उनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, सामाजिक न्याय और क्रांतिकारी चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। सुकांत भट्टाचार्य का जन्म 15 अगस्त 1926 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था, लेकिन श्रोता साथियों, शिक्षा और साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखता था। बचपन से ही जागृति जी, सुकांत का झुकाव जो है वो साहित्य और लेखन की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में प्राप्त की। विद्यालय के दिनों में ही वे कविता लिखने लगे थे। उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि कम उम्र में ही लोगों ने उनके भीतर एक बड़ी साहित्यकार की झलक देख ली थी।
0: बिल्कुल,
1: सुकांत ऐसे समय में बड़े हो रहे थे जागृति जी, जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। समाज में गरीबी, शोषण, भूख, असमानता जैसी समस्याएं व्यापक थी। इन परिस्थितियों का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और यही अनुभव आगे चलकर उनकी कविताओं में दिखाई दिया।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आपने उनके जन्म के बारे में बताया कि उनका जन्म 15 अगस्त 1926 को कोलकाता में हुआ था। श्रोता साथी, उनके पिता का नाम बताया तो उनके पिता का नाम निवारण चंद्र भट्टाचार्य तथा माता का नाम सुनीति देवी था। उनका परिवार मूल रूप से वर्तमान बांग्लादेश के फरीदपुर जिले से संबंधित था।
1: बिल्कुल,
0: बचपन से ही जैसा कि सुकांत जी का झुकाव साहित्य की ओर था और परिवार में साहित्य वातावरण होने के कारण उनकी प्रतिभा को प्रारंभ से ही प्रोत्साहन मिला। इसी के साथ अगर साहित्यिक जीवन के बारे में अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं, सुकांत भट्टाचार्य ने किशोरावस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था।
1: जी जी,
0: उनकी कविताओं में आम जनता की पीड़ा थी, भूख, गरीबी, अन्याय और संघर्ष का सजीव चित्रण मिलता है।
1: जी जी,
0: वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोताओं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम भी है। उनकी कविताएं द्वितीय विश्व युद्ध, बंगाल के अकाल, मजदूरों की दुर्दशा, सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं पर केंद्रित थी। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जागृति फैलाने का प्रयास किया। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य की भावनाओं से जुड़ी हुई थी। इसी कारण उनकी कविताएं लोगों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता और प्रभावशीलता थी।
0: बिल्कुल,
1: उनकी भाषा आम लोगों की भाषा ही थी। उनकी कविताओं में हमें कई प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं, जैसे कि समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता, गरीबों और श्रमिकों के जीवन का चित्रण, क्रांतिकारी सोच, युवाओं के लिए प्रेरणा और भविष्य के प्रति आशा, और इसी के साथ जागृति जी, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण। वे भूख और गरीबी जैसे विषयों को इतनी मार्मिकता से प्रस्तुत करते थे कि पाठक सीधे उन परिस्थितियों को महसूस कर सके। सुकांत भट्टाचार्य ने अपने अल्प जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है छाड़ पत्र, घूमने, पूर्वाभास, मीठे कड़ा, इन रचनाओं में समाज, संघर्ष, आशा और परिवर्तन की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि हम सुकांत भट्टाचार्य के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को अवगत करवा रहे हैं, तो ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी हमारे श्रोता साथियों के साथ। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो साथियों आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में।

0: जागृति जी, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं की विशेषताओं के बारे में, साथ ही उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी थी। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि सुकांत की कविताओं का एक महत्वपूर्ण विषय भूख है। उन्होंने भूख को केवल एक शारीरिक अवस्था के रूप में नहीं देखा बल्कि सामाजिक अन्याय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। जागृति जी, उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों और कविताओं में ये संदेश मिलता है कि जब तक समाज में भूख और गरीबी मौजूद है तब तक विकास अधूरा है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने गरीबों के दर्द को शब्द देकर साहित्य को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
1: जी हाँ अंजलि, हम कह सकते हैं कि सुकांत भट्टाचार्य मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे सामाजिक समानता और शोषण मुक्त समाज के समर्थक थे।
0: बिल्कुल,
1: वर्ष 1944 में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने कई विभिन्न छात्र आंदोलन और सामाजिक अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी कविताओं में क्रांतिकारी चेतना, संघर्ष और परिवर्तन की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। वे मानते थे कि साहित्यकार का कर्तव्य समाज के कमजोर वर्गों को आवाज बनाना है। जैसे कि उनकी रचनाओं की बात करें तो छाड़ पर घूमने, पूर्वाभास अभियान, मीठे कणा, गीती गुच्छ। श्रोता साथियों, इन रचनाओं में सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना, क्रांतिकारी विचार, भविष्य के प्रति आशावादी दिखाई देता है। उनकी प्रसिद्ध कविताएं आठोरो बोछार, बयोश, आगामी, क्रशो केरगान, ये सब आज भी बंगला साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी गई है।
0: बिल्कुल जागृति जी, सुकांत भट्टाचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि उम्र नहीं बल्कि विचारों की शक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। उन्होंने केवल 21 वर्षों का जीवन जिया लेकिन अपने शब्दों से ऐसी मिसाल जलाई जो आज भी साहित्य और समाज को प्रकाश दे रही है।
1: जी हाँ,
0: उनकी कविताएं हमें संवेदनशील बनाती है, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है और यह संदेश देती है कि साहित्य तभी सार्थक है जब वह मनुष्य के दुख दर्द को समझे और बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दे।
1: जी हाँ,
0: सुकांत भट्टाचार्य का जीवन संघर्ष, संवेदना, सामाजिक चेतना और रचनात्मक साहस का अद्भुत उदाहरण है। उनकी विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने आसपास की समस्याओं को देखकर मौन न रहें बल्कि जागरूक नागरिक बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें।
1: जी हाँ,
0: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुकांत भट्टाचार्य का जीवन हमें कई सारी सीख देता है।
1: जी हाँ अंजलि, सुकांत भट्टाचार्य की कविताओं की कुछ प्रमुख विशेषताएं जैसे कि जन सामान्य के जीवन का यथार्थ चित्रण, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज, श्रमिकों और किसानों के प्रति सहानुभूति, देश प्रेम और मानवतावाद, सरल तथा प्रभावशाली भाषा, क्रांतिकारी और प्रगतिशील दृष्टिकोण। श्रोताओं, उनकी कविताएं केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं थी बल्कि समाज में परिवर्तन का आह्वान भी थी। लगातार कठिन परिश्रम, आर्थिक कठिनाइयों और कमजोर स्वास्थ्य के कारण सुकांत भट्टाचार्य क्षय रोग यानी कि टीबी से ग्रसित हो गए। उपचार के बावजूद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई। 13 मई 1947 को कोलकाता के जावतपुर टीबी अस्पताल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 21 वर्ष थी। इतनी कम आयु में उनका संसार छोड़ देना बंगला साहित्य के लिए भी अपूर्णीय क्षति थी।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, सुकांत भट्टाचार्य का जीवन अत्यंत

0: छोटा था, फिर भी उनका साहित्य योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है अंजलि। उन्होंने बंगला कविता को नई दिशा प्रदान की थी, उनकी रचनाओं ने युवाओं को संघर्ष करना सिखाया था, साहस और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया था। उनकी कविताएं आज भी अन्याय के विरुद्ध लड़ने और मानवता की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। सुकांत ने ये सिद्ध किया कि महानता आयु की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपने छोटे से जीवन में जो साहित्यिक विरासत छोड़ी, वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त होते जा रहे हैं, तब सुकांत की रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि साहित्य का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवता को समझना और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाना भी है। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि दूसरों के दुख को महसूस करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और बेहतर भविष्य के लिए आशा बनाए रखना एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। जागृति जी कहना चाहेंगे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कि सुकांत भट्टाचार्य ने अपने शब्दों के माध्यम से ये संदेश दिया है कि सपने देखने वाले लोग ही इतिहास बदलते हैं। उन्होंने युवाओं को निराशा से ऊपर उठकर संघर्ष और परिवर्तन का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उनके विचार आज भी इतने प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मन में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो व्यक्ति अपने कार्यों से अमर हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए कह सकते हैं जागृति जी कि सुकांत भट्टाचार्य आज भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताएं, उनके विचार, उनकी संवेदनशील दृष्टि आज भी साहित्य प्रेमियों, युवाओं और समाज के हर जागरूक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो बस यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से कि कलम वही महान है जो समाज के दर्द को पहचान है। सुकांत की वाणी आज भी परिवर्तन की पहचान है।
1: जी हाँ।
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
2: नमस्कार।
0: साथ ही आप सभी को छोड़े चलते हैं इस गीत के साथ में।
3: नफरत

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन में प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायी कहानी जो हमें बताती है कि गृहस्थी केवल चार दीवारों का नाम नहीं है बल्कि यह प्रेम त्याग परिश्रम और जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। आज की कहानी का शीर्षक है श्रोता साथियों गांव की गृहस्थी। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि गांव की गृहस्थी यानी कि संघर्ष संस्कार और सफलता की पाठशाला। हम देखते हैं कि गांव की गृहस्थी भारतीय संस्कृति की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। ये केवल एक परिवार नहीं होता बल्कि जीवन जीने की कला का विद्यालय है। गांव की गृहस्थी में श्रम होता है, सहयोग होता है, सादगी होती है, आत्मनिर्भरता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको ये कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में वागर रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन मैं कार्यक्रम कथा कहानी को लेकर हाजिर होती हूँ। तो श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नई नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानियों को सुनते हैं और उस कहानी से जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में जरूर उतारते होंगे और वैसा ही करने की कोशिश करते होंगे। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आज फिर लेकर हाजिर हूँ एक और नई कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक, जैसे कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि गांव की गृहस्थी, यानी कि श्रोताओं आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि गांव की गृहस्थी कैसी होती है। तो श्रोताओं, कहानी शुरू होती है इस तरह से, जैसे कि एक गांव था और उस गांव में रामलाल नाम के किसान रहते थे। उनका परिवार बड़ा नहीं था, पत्नी गीता, बेटा मोहन और बेटी राधा, यानी कि श्रोता साथियों एक बेटा और एक बेटी थी और एक उनकी पत्नी थी, यानी कि कुल मिलाकर चार जने उस घर में रहते थे। घर कच्चा था, खेत छोटा था और आमदनी सीमित थी, लेकिन परिवार में प्रेम और अपनापन भरपूर था। दोस्तों, रामलाल सुबह सूरज निकलने से पहले खेत की ओर निकल जाते, गीता घर के कामों के साथ पशुओं की देखभाल करती, बच्चों को पढ़ाती और घर की छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखती। एक दिन दोस्तों, गांव में लगातार सूखा पड़ गया, खेतों में फसल खराब हो गई, कुएं का पानी भी कम होने लगा, गांव के कई परिवार शहर की ओर पलायन करने लगे। रामलाल भी चिंतित था, उसने गीता से कहा, अब क्या होगा, फसल नहीं हुई, घर का खर्च कैसे चलेगा। गीता मुस्कुराकर बोली, चिंता से समस्या हल नहीं होती है, मेहनत और विश्वास से रास्ते निकलते हैं। गीता की बात सुनकर रामलाल को थोड़ा सा साहस मिला। दोस्तों, अगले दिन गीता ने घर के पीछे खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाने का सुझाव दिया, उसने कुछ मुर्गियां भी पाल ली, बच्चों ने भी उसका साथ दे दिया। दोस्तों, धीरे धीरे घर की जरूरत की सब्जियां वहीं से मिलने लगी, ज्यादा सब्जियां बाजार में बिकने लगी। कहते हैं कि मुश्किल से मत घबराओ, मेहनत से राह बनाओ, यानी कि श्रोता साथियों, अगर मुश्किलों से हम घबरा जाएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए जब भी मुश्किल आए तो मेहनत से हमें रास्ता खोजना है। कुछ महीनों बाद दोस्तों, गांव में एक स्वयं सहायता समूह बना, गीता भी उसमें शामिल हो गई। उसने सिलाई सीख ली और गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। अब घर की आय भी बढ़ने लगी। दोस्तों, रामलाल ने देखा कि उसकी पत्नी अब केवल गृहिणी नहीं बल्कि पूरे परिवार की ताकत बन चुकी है। एक दिन उसने कहा, गीता तुमने इस घर को संभाल लिया, वरना मैं तो हार मान चुका था। गीता बोली, गृहस्थी तब मजबूत होती है जब परिवार का हर सदस्य अपना कर्तव्य निभाता है। दोस्तों, इसी तरह समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसने स्कूल छोड़ने का मन बना लिया। जब गीता यानी कि उसकी माँ को ये बात पता चली दोस्तों, तो उसने बेटे को समझाया, बेटा गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती, अगर मन मजबूत हो तो कठिन परिस्थितियाँ भी रास्ता नहीं रोक सकती। मोहन ने पढ़ाई जारी रखी, राधा भी पढ़ने में तेज थी। गांव के कुछ लोग कहते थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों, रामलाल और गीता ने समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, बेटा और बेटी दोनों हमारे लिए समान है। सालों की मेहनत रंग लाई दोस्तों। मोहन कृषि विज्ञान पढ़कर गांव लौटा, उसने नई तकनीकों से खेती शुरू करवाई, राधा शिक्षक बन गई और गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। दोस्तों, अब वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब वो उनकी प्रशंसा करने लगे थे, और कहा भी गया है कि शिक्षा का दीप जलाएंगे तो जीवन अपने आप ही सफल बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों, समय बीतता गया और एक दिन गांव में पंचायत की बैठक हुई, गांव के विकास पर चर्चा चल रही थी। मोहन ने जल संरक्षण का सुझाव दिया, वहीं राधा यानी कि उसकी बहन ने महिला शिक्षा पर जोर दिया, गीता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। दोस्तों, गांव वालों ने उनके सुझावों को स्वीकार किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा, तालाब बनने लगे, पेड़ लगाए गए, लड़कियों की शिक्षा बढ़ी और लोगों में जागरूकता आई। इसी तरह दोस्तों, एक शाम रामलाल अपने आंगन में बैठा था, उसने अपने परिवार को देखा और उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया वो समय जब सूखे ने सब कुछ छीन लेने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के विश्वास, मेहनत और एकता ने हार को जीत में बदल दिया। तभी रामलाल बोला, आज समझ आया कि असली संपत्ति जमीन या पैसे में नहीं है बल्कि परिवार का साथ होता है। तभी गीता मुस्कुराई और बच्चे भी भावुक हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि गांव की गृहस्थी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि परिवार एकजुट रहे, मेहनत करे और सकारात्मक सोच बनाए रखे तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता।
गृहस्थी केवल रोटी कमाने का नाम नहीं है दोस्तों, ये जिम्मेदारी, प्रेम, त्याग, सहयोग और विश्वास का विद्यालय है। और कहा गया है दोस्तों कि जहाँ परिवार में प्रेम होता है वहाँ हर संघर्ष छोटा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी गांव की गृहस्थी। आगे भी छोटी मोटी बातें रहेगी वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन बीच बीच में हम कार्यक्रम में मनोरंजन करते हैं, तो अभी मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप बने रहें वागर रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी गांव की गृहस्थी, जैसा कि गांव की गृहस्थी किस तरह से मोहन, राधा, रामलाल और गीता ने अपने घर को संभाला और किस तरह गांव में बदलाव की शुरुआत की, इसी तरह दोस्तों हम भी ये सब चीजें कर सकते हैं। बस उम्मीद होनी चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी और मुश्किलों का सामना करना बहुत जरूरी है। अगर मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे, डर जाएंगे, तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि ग्रामीण जीवन में परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ग्रामीण हो या शहरी, हर परिवार में प्रत्येक सदस्य की भूमिका बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, किसान खेत में मेहनत करता है, महिलाएं घर और पशुधन की देखभाल करती है, जबकि बच्चे शिक्षा प्राप्त कर भविष्य की तैयारी करते हैं। सभी मिलकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गांव की गृहस्थी हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। सीमित संसाधनों में भी हम देखते हैं कि लोग संतोष और मेहनत के साथ जीवन बिताते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देने की बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं से निराश हो जाते हैं दोस्तों, तब गाँव की गृहस्थी हमें धैर्य और संघर्ष का महत्व भी समझाती है। इसलिए कहा गया है कि संघर्ष से मत घबराना, मेहनत से ही मंजिल मिलती है। और हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि गृहस्थी का सबसे बड़ा आधार ही आपसी विश्वास है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं, तब कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती है, जैसे कि रामलाल ने गीता का साथ दिया। किस तरह से उनका परिवार आज शिक्षित भी हुआ और आगे भी बढ़ा। अगर रामलाल उस समय गीता का साथ नहीं देते, तो आज उनका परिवार भी गरीबी में रहता और दुख का पहाड़ उन पर टूट पड़ता। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि जब परिवार साथ होता है, तो हर मुश्किल कार्य भी हम आसानी से कर सकते हैं। और कहते हैं कि एकता की शक्ति अपार होती है, इससे परिवार बहुत मजबूत होता है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं की भूमिका भी गृहस्थी में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि गृहस्थ में महिलाओं के बिना गृहस्थ नहीं चल सकता, यानी कि घर नहीं चल सकता। इसलिए महिलाएं अपने गृहस्थ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, तो ही एक परिवार बहुत अच्छे से चल पाएगा। महिलाएं केवल घर नहीं संभालती दोस्तों, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास में भी अपना योगदान देती है। हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह और छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। शिक्षा भी ग्रामीण गृहस्थी को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षित परिवार बेहतर निर्णय ले सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे कह सकते हैं कि गांव की गृहस्थी यानी कि ये केवल जीवन यापन का साधन नहीं है, बल्कि संस्कारों, मेहनत, प्रेम और जिम्मेदारी की जीवंत पाठशाला है। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि मन में विश्वास हो, परिवार में एकता हो, तो सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आपको भी कहना चाहेंगे कि आपके पास बड़ा घर नहीं है तो निराश मत होइए, यदि संसाधन कम है तो हिम्मत मत हारिए। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी ताकत धन नहीं बल्कि परिवार का विश्वास है, मेहनत की आदत और सकारात्मक सोच है। गृहस्थी का बोझ नहीं, अवसर समझिए। अपने परिवार को समय दीजिए, रिश्तों को मजबूत बनाइए और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि गृहस्थी की डोर संभालेंगे, प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे, मेहनत को अपना साथी बनाएंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा लेने से पहले आपको हमारा पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार। साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान।
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हेलो बच्चों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। आ गई हूं बच्चों बात नन्हे दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ जो आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो बच्चों आज भी मैं कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानियाँ तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जुमा रहा थोड़ा।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में। जैसा कि बच्चों गीत से पहले मैंने कहा था कि मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ, तो बच्चों आज हमारी पहली कहानी है ईमानदार चिड़िया और सुनहरा दाना। बच्चों कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, उसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत ही मेहनती, दयालु और ईमानदार थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी, अपने बच्चों के लिए दाना खोजती और पूरे दिन मेहनत करती। एक दिन चिन्नी खेतों में दाना ढूंढ रही थी, तभी उसे मिट्टी में चमकती हुई एक सुनहरी चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा दाना था। वह इतना सुंदर था बच्चों कि उसको देखकर किसी का भी मन ललचा जाए। चिन्नी ने सोचा, यदि मैं इसे अपने पास रख लूं तो शायद मुझे बहुत लाभ हो जाए। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की सीख याद आई, बेटी जो चीज हमारी नहीं है उसे कभी अपना नहीं समझना चाहिए। चिन्नी ने निश्चय किया कि वह उस दाने की असली मालिक को खोजेगी। वह पूरे गाँव में उड़ती रही और सभी से पूछती रही कि यह सुनहरा दाना किसका है। कई लोग ने लालच में आकर कहा यह मेरा है, लेकिन चिन्नी उस दाने के बारे में पूछती तो वे उत्तर नहीं दे पाते। शाम होने लगी, चिन्नी थक चुकी थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी गांव के बाहर एक बूढ़ा किसान दिखाई दिया। किसान बहुत ही उदास बेटा था। चिन्नी ने पूछा, बाबा आप इतने परेशान क्यों हो? किसान ने कहा, आज मेरे खेत में एक विशेष सुनहरा बीज खो गया। वह मेरे पिता की निशानी थी, मैं उसे बहुत संभाल कर रखता था। चिन्नी ने उसे उस बीज की पहचान पूछी। किसान ने उसके सारी विशेषताएं सही सही बता दी। चिन्नी समझ गई कि यही उसका असली मालिक है। उसने तुरंत सुनहरा दाना किसान को लौटा दिया। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा अमूल्य खजाना वापस दिला दिया। किसान ने पुरस्कार के रूप में चिन्नी को बहुत सारे दाने देने चाहे, लेकिन चिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं बल्कि सही काम करने के लिए किया है। किसान उसकी बात सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने पूरे गांव को चिन्नी की ईमानदारी की कहानी सुनाई। धीरे धीरे चिन्नी पूरे गांव की प्रिय बन गई। सभी बच्चे उससे प्रेरणा लेने लगे और सच बोलने तथा ईमानदार रहने का प्रयास करने लगे। कुछ समय बाद गाँव में अकाल पड़ गया बच्चों, खाने की कमी होने लगी। तभी गांव वालों को चिन्नी की ईमानदारी याद आई। सभी ने मिलकर उसके और उसके बच्चों की मदद की। चिन्नी ने समझ लिया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे किसी न किसी रूप में वापस लौटकर हमारे जीवन में सुख और सम्मान भर देते हैं। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनता है उसे जीवन में सम्मान, विश्वास और सफलता अवश्य मिलती है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आपको मैं आगे एक और प्यारी कहानी जरूर सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपके अपने दीदी मनीषा दीदी के साथ में।

बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने गीत से पहले एक प्यारे से कहानी आपको सुनाई थी, अब यही मैं आपको एक और प्यारे से कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है आरव और अधूरा पुल। बच्चों एक छोटे से गाँव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था लेकिन उसकी एक आदत थी, वह किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही छोड़ देता था। कभी चित्र बनाना शुरू करता और बीच में ही छोड़ देता, कभी पतंग बनाता और अधूरी ही छोड़ देता। उसके माता पिता उसे समझते थे लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बच्चों एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई, सभी बच्चों को अपनी अपनी परियोजनाएं बनानी थी। आरव ने सोचा कि वह लड़की और गति से एक सुंदर पुल बनाएगा। उसने बड़े उत्साह से काम शुरू किया। पहले दिन उसने पुल का आधा हिस्सा बना लिया लेकिन दूसरे दिन उसे लगा कि यह काम बहुत ही कठिन है, मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी कोई दूसरा बच्चा मुझसे अच्छा मॉडल बना लेगा। उसने अपना काम छोड़ दिया बच्चों और खेलने चला गया। कुछ दिनों बाद उसका मित्र विवान उससे मिलने आया। विवान भी प्रदर्शनी के लिए एक मॉडल बना रहा था। उसका मॉडल अभी पूरा नहीं हुआ था फिर भी वह रोज मेहनत करता रहता था। आरव ने पूछा, तुम रोज इतना समय क्यों देते हो? अगर पहला पुरस्कार नहीं मिला तो? विवान मुस्कुराया और बोला, मैं पुरस्कार के लिए नहीं सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। अगर मैं बीच में हार मान लूंगा तो कभी नया काम नहीं सीख पाऊंगा। विवान की बात आरव के मन में घर कर गई। उसी रात उसने अपने कमरे में रखा अधूरा पुल देखा। उसे लगा जैसे वह पुल उससे कह रहा हो, तुमने मुझे पूरा होने का मौका ही नहीं दिया। अगली सुबह आरव जल्दी उठा। उसने तय कर लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर बच्चों अपने मॉडल पर काम करना शुरू किया। कभी गोंद सही नहीं लगती, कभी कोई हिस्सा टूट जाता, लेकिन इस बार वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसका पुल आकार लेने लगा। उसने उसमें सड़क बनाई, छोटे छोटे पेड़ लगाए और रंग भी किए। बच्चों जब मॉडल पूरी तरह से तैयार हुआ तो वह खुद देखकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही पुल है जिसे वह अधूरा छोड़ने वाला था। प्रदर्शनी का दिन आया। बच्चों सभी बच्चों ने अपने मॉडल लगाए। आरव का पुल देखने के लिए बहुत से लोग आए। शिक्षक ने उसकी मेहनत की तारीफ की। बच्चों बाद में परिणाम घोषित हुए। पहला पुरस्कार किसी और छात्र को मिला लेकिन आरव को सर्वश्रेष्ठ प्रयास और लगन का विशेष सम्मान मिला। पुरस्कार लेते समय आरव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वह प्रथम नहीं आया, उसे उस बात की खुशी थी कि उसने पहली बार किसी काम को अंत तक पूरा किया था। घर लौटकर उसने अपना सम्मान पत्र अपने माता पिता को दिखाया। उसके पिताजी ने कहा, बेटा आज तुमने पुरस्कार की सबसे बड़ी चीज हासिल की है, अपने ऊपर विश्वास। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी काम को बीच में छोड़ना नहीं सीखा। जब भी कोई काम कठिन लगता वह अपने उस पुल की तरह याद करता जो कभी अधूरा था लेकिन धैर्य और मेहनत से पूरा हुआ था। कुछ वर्षों बाद वही आरव अपने स्कूल का सबसे मेहनती और जिम्मेदार छात्र बन गया। लोग उसकी सफलता की तारीफ करते थे लेकिन आरव जानता था कि उसकी सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब उसने हार मानने के बजाय कोशिश जारी रखने का फैसला लिया था। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफल लोग वे नहीं होते जिन्हें कभी कठिनाइयां नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद अपने काम को पूरा करते हैं। अधूरे प्रयास सफलता नहीं दिलाते हैं साथियों, अधूरे प्रयास सफलता नहीं दिलाते हैं बच्चों, लेकिन निरंतर मेहनत अवश्य दिलाते हैं। आशा करती हूँ।

बच्चों, आपको ये प्यारी सी कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

बच्चों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मैंने आपको जो कहानी सुनाई वो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी मनीषा पटेल को कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करी है। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जी हाँ श्रोता साथियों, भाग्य भी उसका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 एफएम पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से एक नई शख्सियत को जोड़ते हैं, तो आज भी हमारे बीच में नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके जीवन के कुछ अनुभवों को, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे वागड़ रेडियो परिवार में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रहे हैं, जो कि हर रविवार को विशेष अतिथियों के साथ हमारा कार्यक्रम रहता है, तो सर आज कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मैम, मेरा नाम रमेश चंद्र पाटीदार है और मैं डूंगरपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं बांसवाड़ा शहर का ट्रैफिक इंचार्ज हूँ और लोगों को ट्रैफिक के बारे में काफी नियमों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और यातायात व्यवस्था सुधारने का कार्य कर रहा हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो सबसे पहले मैं आपके जीवन के परिचय के बारे में जानना चाहूँगी कि आपका जो बचपन है वो किस कदर बीता।
1: जी मैम, बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा आपने, बचपन की याद दिला दी है।
0: जी जी।
1: तो निश्चित तौर से हमारा बचपन बहुत ही अभावों में बीता है। मेरा गांव नौगांव है, जो डूंगरपुर जिले में है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बिल्कुल रोड से कटा हुआ, वहाँ ना कोई लाइट की सुविधा ना ही कोई रोड की सुविधा, ऐसी स्थितियों में भी हमने अभावों में हम रहे।
0: जी।
1: मैंने BSc किया, तब तक मैंने लालटेन में और दीपक में पढ़ाई की है।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बहुत ही अभावों में बीता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब हमें पूरी तरीके की सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तब हम हमारे जीवन की जो स्थिति होती है उसे ही अपना कर बैठ जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपका जो बचपन है वो बड़े ही अभाव में बीता, आपने लालटेन और उनके बीच में पढ़ाइयाँ की है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका ये जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें क्या क्या ऐसे संघर्ष रहे, जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों को बताइए, ताकि वो भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति को लेकर हताश न होए और जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते रहे।
1: जी मैम, एक्चुअल में बचपन से हम पढ़े, हमारे गांव में पहले दूसरी तीसरी क्लास थी, हम चौथी क्लास भी बाहर बचपन में पढ़ने जाते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: और इसके बाद हम दूरस्थ जाते थे, बरसात के मौसम हम कई दफे पानी में गिरते थे, बस्ते भी भीग जाते थे।
0: जी जी।
1: फिर भी स्कूल में जाके दरी पे बैठते थे, दरी भीग जाती थी, ऐसे अभाव थे। उसके बाद भी हम पढ़ के आते थे और हमारे ना तो घरों में लाइटें थी।
0: जी जी।
1: ये भी आपको मैंने पहले बता दिया, अवगत कराया है। तो ऐसी स्थितियों में हम आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर से पढ़ना है, ये मन में ठान लेते हैं और आगे बढ़ना ये तय हो तो निश्चित तौर से अपन आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी अभाव को देखते हो, उस अभाव के साथ तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति का विकास रुक जाता है।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकतर हम मनुष्य जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि अगर किसी एक जो इंसान है उनके साथ में, जो उनका फ्रेंड ही मान लेते हैं हम, अगर उसके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं तो वो अपने घर पर आकर उन सारी चीजों का जिक्र करने लगता है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, मेरे पास तो न तो टेबल कुर्सी है, न ही अपने घर पर ढंग से लाइट आती है, न ही हमारे पास पंखा है। तो ऐसे में माता पिता जो होते हैं वो भी बच्चे की उस बात को मान लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा आखिरकार सही तो कह रहा है ना, हमारे पास क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उसे दे रहे हैं जो आगे बढ़ा सकती है। तो ये जो सारी चीजें जब माता पिता और बच्चे दोनों ही अपने मन में डाल लेते हैं तो वो किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही स्थिति में वो रह जाते हैं। तो सर अब यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो शिक्षा का क्षेत्र, जैसा कि आपने बताया कि अभाव थे लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़े, तो बचपन से ही आपकी जो हॉबीज थी वो यही थी कि आपको आगे जाकर किसी सरकारी पद पर ही जाना है, या आप अपने जीवन में कुछ और बनना चाहते थे?
1: मैम दो बातें तो दोनों थी, लेकिन एक्चुअल में हम BSc निकले।
0: जी जी।
1: और निकलते ही हमारे साथी कुछ पुलिस में फॉर्म भर रहे थे, तो उसमें कोई एग्जाम नहीं होते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो सीधा ही लेते थे, हमने पुलिस लाइन नंबर में फॉर्म भर दिया, दूसरे दिन हमारी दौड़ वगैरह हो गई और शाम को हमारा सिलेक्शन हो गया। तो इस कारण से क्या एक्चुअल में हम कुछ आगे नहीं कर पाए पुलिस में आने के बाद, बाकी इच्छाएं तो कहीं न कहीं आगे उच्च पद की प्राप्त करने की थी।
0: जी बिल्कुल।
1: जो कांस्टेबल में आने से दबी है।
0: जी बिल्कुल,
1: ये निश्चित तौर से है। और आपने एक प्रश्न कहा है कि किसी लोगों की सुविधा बहुत ज्यादा है घर में या नहीं है, अभाव है, तो बच्चों को क्या सुविधा दे सकते हैं? तो बच्चों में जिसको लगन है पढ़ना है वो तो इन बिना टेबल कुर्सी के भी पढ़ सकता है, बिना पंखे के भी पढ़ सकते हैं, और उसको सुविधा देनी है। कई लोग ऐसे हमने सुना भी है कि कई बच्चों रोड की लाइट के खंभे के नीचे भी पढ़ करके अधिकारी बने हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जिसमें ललक है वो तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेगा। साधनों का अभाव किसी की उन्नति में बाधक नहीं होना चाहिए, ये दृढ़ निश्चित हो तो वो निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा।
0: जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे युवा साथियों को आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है कि हमारी जो भी स्थिति है उसमें हम अपनी लगन को, हमारा जो लक्ष्य है उसे सबसे पहले निर्धारित करें और उस लक्ष्य पर ही अगर हम अमल करते हैं दृढ़ निश्चय करके तो अवश्य हम उस तक पहुंच पाते हैं। तो सर, जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी चल रही है, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारी जो युवा अवस्था होती है, हमारा जब बचपन होता है तब हमारी खेलने कूदने की इच्छा बहुत ज्यादा करती है। हम देखते हैं कि आज हम क्रिकेट खेल लें, वॉलीबॉल खेल लें, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको कौन सा खेल पसंद था, क्या अब की जो प्रगति है उसमें कभी आपके जो खेलने की चीजें हैं वो कभी बाधक बनी?
1: गाँव में ऐसी कोई सुविधा उस समय नहीं थी। आज जो क्रिकेट वगैरह की और दूसरे खेलों की बात कर रहे हैं, गाँव में हमारे प्रचलित थे गिल्ली डंडे।
0: जी बिल्कुल।
1: इसके अलावा हमारे पास कीड़ा डोट थी जो संक्रांति से 15-20 दिन पहले शुरू करते थे, गाँव की गलियों में खेलते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: ये बहुत ही बढ़िया थे, ये दो गेम हमें बहुत ही प्यारे लगते थे और इसी के आधार पर हम खेलने का मन करते थे, उसी में ज्यादा रुचि थी। बाद में भविष्य में तो हम, वैसे मैं रनर भी रहा दौड़ वगैरह में, इसके बाद में जूडो कराटे चैंपियंस में भी रहा, पुलिस विभाग में भी उस समय में मैंने मेडल प्राप्त किए।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन अब एज 55-56 की हो गई, मैं लगभग 15-20 साल से इन खेलों से दूर हो चुका हूँ।
0: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हम कह सकते हैं कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खेल कूद में रह जाते हैं, पढ़ाई को महत्व नहीं देते हैं, तो हम खेल कूद के साथ अपनी इच्छाओं को अच्छे से जीते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपके परिचय में आपने हमें बताया था कि आप ट्रैफिक इंचार्ज हैं, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम देखते हैं कि आए दिन अखबार में हमें कम से कम 5 से 7 खबरें ऐसी मिली जाती हैं कि जहां पर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं कह सकते हैं कि नियमों का पालन न करने के कारण होती है, तो ऐसे में आप हमारे उन श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैम, ट्रैफिक के बारे में मैं निश्चित तौर से कहूंगा, एक बड़ा ही दुखद विषय है। अकाल मौत एक्सीडेंट में होना
0: जी
1: किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़े सदमे से कोई कम नहीं है, क्योंकि जिसके परिवार में कोई एक्सीडेंट हुआ है, घायल हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है या मौत हुई है, वो ही उसकी पीड़ा ज्यादा बयां कर सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: मेरा 30-35 साल से पुलिस में हूँ, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ये जो वाहन चालक है वो ट्रैफिक नियमों का कहीं पालन नहीं करते हैं।
0: जी जी।
1: इसी कारण से एक्सीडेंट होता है। सडनली कोई एक्सीडेंट होना मैं नहीं मानता।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि ट्रैफिक में निश्चित तौर से जो वाहन चालक हैं वो सबसे पहले, अगर जैसे मोटरसाइकिल है तो वो हेलमेट का प्रयोग करें, तो निश्चित तौर से वो गिर भी जाएगा तो अपनी जान बचाएगा, क्योंकि हेड इंजरी से मौत होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हेलमेट निश्चित तौर से पहने, 4-व्हीलर है तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
0: जी जी।
1: अच्छा, वाहन चलाने के लिए 18 साल से अधिक की उम्र का ही व्यक्ति चला सकता है, उसका निर्धारित लाइसेंस 18 साल बाद ही प्राप्त होता है DTO से। तो निश्चित तौर जो 18 साल से कम के बालक हैं, अभिभावक जो हैं वो गलती एक करते हैं, 18 साल से कम के बच्चों को अपनी व्हीकल दे देते हैं और उनको बड़ी बड़ी महंगी आजकल बाइकें देते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जबकि बच्चा जिद्दी है, मैं मानता हूँ जिद करके लेते हैं, तो उनकी जिद को कहीं ना कहीं शमन करना चाहिए, अन्यथा एक दिन आपके घर में भी वही एक्सीडेंट का मातम आएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो यातायात के नियम है उनको निश्चित तौर से माने, सड़क पर आप रॉन्ग साइड नहीं चले, निर्धारित जो गति है उससे वाहन को तेज न चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करना ही है। इसके अलावा आप जो से बड़ी गाड़ियां हैं, कोई परिवहन वाहन है, उसमें क्षमता से अधिक सवारियां न बिठाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं। वाहन चलाते समय कहीं लोग शराब का सेवन करते हैं, ये बहुत ही घातक है, उसके खुद के लिए भी घातक है और सामने से सही चलने वाले के लिए भी घातक है। शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनकी गाड़ी भी जब्त करते हैं, वो शराब वाला मामला वास्तव में बहुत ही डेंजर है। इसके अलावा व्हीकल जो है MV एक्ट में है, उन MV एक्टों में बहुत सारे जो प्रावधान है उनका अगर पालन किया जाए तो निश्चित तौर से दुर्घटनाओं में अपन कमी ला सकते हैं। वाहनों में जो फिटनेस वगैरह है ये देखनी चाहिए, RC बीमा निश्चित तौर से करवाया जाना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: अपने जैसे शहरों में क्या करते हैं, अपना वाहन है वो कहीं कहीं डामर रोड पे खड़ा कर देते हैं, जहाँ दुकान मिली वहाँ खड़ा कर दिया चले जाते हैं, पीछे से कोई स्पीड से आता है तो टक्कर होती है, घायल होता है। तो कृपया शहरों के लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी वाहन सड़क पर खड़ा नहीं करें, पार्किंग स्थल पर करें, दुकानों के सामने तरतीब से वाहन लगावे, रॉन्ग साइड कभी नहीं चले। वाहन चलाते समय एक मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे ही घंटी बजती है तो वो मोबाइल उठाता है तो निश्चित तौर से वो स्वयं भी गिरता है या सामने वाले के साथ भी टक्कर मारता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये जो एक मोबाइल है, शराब पी के चलाना, ये एक्सीडेंट के कहीं ना कहीं बड़े कारण हैं। और रॉन्ग साइड चलना ये बड़े हैं, तेज चलना, तो इसके ऊपर अगर अंकुश लगाया तो मैं उसी के ऊपर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और लोगों के जो जीवन मौतें हैं उन मौतों के आंकड़ों को कम करने के प्रयास कर रहे हैं। विभाग, पुलिस विभाग भी इसमें लगा हुआ है, परिवहन विभाग भी इसमें लगा हुआ है, फिर भी लोगों में कुछ जागरूकता की कमी है। तो हम निश्चित तौर से विद्यालयों में भी इस संबंध में सेमिनार कर रहे हैं। मेरे स्वयं के द्वारा भी अभी प्रतापपुर में गया था, वहाँ विद्यालय में हमने नेल्सन स्कूल है उसमें हमने निश्चित तौर से बालकों के साथ संवाद किया था। और इसके अलावा मैं घाटोल गया, कल मैं कुशलगढ़ जाके आया, लोगों को अवेयरनेस और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी अवेलेबल करा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: जी मैम।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। हम देख रहे हैं कि आए दिन ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत सी बार हमारी ना समझी की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये नियम बनाए गए हैं ट्रैफिक वाले, वो हमारे मनुष्य के लिए उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे में हम बहुत सी बार अपनी लापरवाही के कारण, जल्दबाजी के कारण ऐसे कुछ कृत्य कर देते हैं। और खासकर अभी हम देखते हैं सर कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जोशीली हो गई है। आजकल उन्हें अलग अलग स्टंट करने होते हैं, अपने आप को कुछ अलग साबित करने के लिए वो कुछ भी सरेआम करते रहते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: आपने एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न उठाया मैम। आज जो युवा है आज वो कुछ ग्रुप बनाते हैं,
0: जी जी,
1: अपनी बाइक महंगी माता पिताओं से दबाव डालकर खरीदते हैं और इसके बाद उनको बहुत ही तेज गति से चलाना इनका शौक बन गया है। और एक दूसरे की कंपटीशन में इनके ही व्यक्ति कहीं न कहीं आपस में टकरा के गिरने से मौतें हो रही है, जो अकाल मौतें हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: ये जो स्टैंड करने वाले जो बालक है वो कहीं न कहीं कॉलेज स्तर के लोग हैं, या कॉलेज कर चुके हैं,
0: जी जी,
1: या कुछ बेरोजगार हैं, या कहीं अहमदाबाद वगैरह में जो अपना बिजनेस करते हैं और वापस घर आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैम बिल्कुल यहाँ पावर बाइक्स हम जब्त करने की पूरी कार्रवाई करते हैं और इनको समझाइश करते हैं, शराब पीकर ना चलाएं, स्टैंड ना करें। और इसके अलावा भी हम नियमानुसार उनके गाड़ियां हैं वो जब्त करने के बाद कोर्ट से छुड़ाने के लिए कहते हैं। प्रयास काफी है लेकिन फिर भी इन युवाओं में एक क्रेज बन गया है, कुछ ग्रुप बना रखे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा जो आज भारत के एक तरह से राष्ट्र निर्माता हैं, और जब भारत का राष्ट्र निर्माता ही युवा अपना अकाल मौत कर लेता है हाथों से अपनी ही गलती से, तो एक दुखद विषय है। इस पर इन युवाओं को भी सोचना चाहिए और इस प्रकार के स्टैंड से बाहर आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही है, यही मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि माता पिता बच्चों को इन सारे संस्कारों को देने में बचपन से ही क्या ऐसी चीजों को अपना सकते हैं। हम देखते हैं कि माँ बाप का इस चीज में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से ही जिस तरीके से हम बच्चों को जिस स्थिति में ढालते हैं, जो वो हमारे आसपास के वातावरण में देखते हैं, वही आगे चलकर करते हैं। तो माता पिता इस चीज में कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
1: जी मैम, एक्चुअल में होता यही है कि आज के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे के शौक क्या ना तौर पर
0: जी जी
1: माता पिता के ऊपर दबाव डालकर वाहन लाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: और एक दूसरे को कंपटीशन में देखना चाहते हैं। बहुत ही गलत धारणा हो चुकी है। माँ बाप का ये फर्ज होना चाहिए कि सख्ती से मना कर दे और उनको वाहन ना दे। 18 साल का अगर उम्र नहीं हुई है तो उन बच्चों को वाहन कतई ना दे।
0: जी बिल्कुल।
1: इसके अलावा अगर 18 साल हो गई है तो अपने बच्चों का लाइसेंस बनवा लें, वाहन का बीमा करके ही वाहन दें। बच्चे को घर से निकले तो हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करें, नहीं पहनता है तो स्वयं अगर पुलिस को मिलके इसका चालान करवाएं या गाड़ी जब्त करवाएंगे और आगे आएंगे तो ही इनको बचाया जा सकता है। आज तो हम कोई चालान बनाते हैं हेलमेट का, मैं शहर में हमें उच्च अधिकारियों द्वारा कहा गया, आज हमारे महानिरीक्षक पुलिस लेडीज हैं एस परिमला जी, उनके सख्त निर्देश हैं कि 100% संभाग मुख्यालय होने पर 100% हेलमेट का प्रयोग करेंगे। तो उसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ, बिना नंबर वाहन नहीं होना चाहिए शहर में। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो आज सिफारिश करते हैं
0: जी जी।
1: जो उच्च पद पे बैठे हैं, चाहे वो कहीं न कहीं अपने आप को उच्च समझ रहे हैं या कहीं राजनीति में हैं, तो ऐसे लोग सिफारिश करते हैं कि इसका हेलमेट छोड़ दीजिए साहब, आप मत बनाइए, कैसे बनाते हो देख लेंगे, ऐसी धमकियां देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोत्साहित करके उनकी मौत को बुलाना देते हैं। तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा, जो भी सिफारिश अगर करे तो निश्चित तौर से ये देखे कि वो कल उसको मौत को आप निमंत्रण दे रहे हैं। इस संबंध में मेरे भाई टीचर है, उसको एक बार चालान बन रहा था पुलिस का और मुझे सिफारिश की, मैंने उसको दो बार बचाया, तीसरी बार जब आया तो मैंने स्वयं कह दिया कि इसका चालान बनाइए और उसका चालान बना। उसके बाद उसने हेलमेट का प्रयोग किया और दो बार गिरा, वो वाके मिला मुझे और कहा चरण स्पर्श करके, भैया आपने अगर मेरा चालान नहीं बनाया होता तो मैं हेलमेट कभी नहीं पहनता और आज मैं बच गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सिफारिश करता है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे राजनेता हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या कोई भी सामान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अगर कोई सिफारिश चालान के लिए करते हो, हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए, नंबर प्लेट नहीं है उसके लिए सिफारिश करते हो, चालान बचाने के लिए 500,000 रुपया बचाने के लिए, तो मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप कहीं न कहीं इन रोड एक्सीडेंट में युवाओं की जान जोखिम में डालकर उनकी मौत को बुलावा दे रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बार हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, दो बार बचा लेते हैं, निरंतर जान पहचान होने के कारण हम हमारे बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वो एक ऐसी चीज है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वही समझाइश अगर हम हमारे बच्चों से कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो होते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है, वो अच्छे से समझ जाएगा कि किस तरीके से उन्हें अपने नियमों का पालन करना है और अपनी जान को बचा कर रखना है।
1: जी मैम, इसमें एक मैं और शब्द कहूंगा, आज शहर में फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाले, अगर कोई रोगी वाहन जाता है, सायरन बज रहा है, उसको साइड देने के बजाय उससे और आगे चलता है, स्पीड करके और आगे चलता है, उसको साइड नहीं देता है। ऐसे लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अगर कहीं पर भी किसी भी रास्ते पे, चाहे शहर हो, आम सड़क हो, हाईवे हो, अगर आपको सायरन बजता हुआ कोई गाड़ी रोकी की दिखती है या अग्निशमन की दिखती है, तो उनको तत्काल आपकी गाड़ी साइड में रोकें, ब्रेक करें और उनको आगे जाने का मौका दें। रोगी वाहन से किसी की जान बचाई जा सकती है और अग्निशमन से कहीं आगे कोई अग्नि हो रही है, कहीं अग्निकांड हुआ है, कोई जान जल रही है या कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको अतिशीघ्र बचाया जा सके। तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये रोगी वाहनों को और अग्निशमन को तत्काल रास्ता दे साइड में खड़े करके।
0: जी बिल्कुल जी। तो सर, जैसा कि बातें हमारी कार्यक्रम में आपसे बहुत अच्छी चल रही है, इसी बीच हमारे टीम साथी कमलेश बुनकर जी भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे।
1: जी मैम।
2: जी सर
1: नमस्कार।
2: सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है वागड़ रेडियो में। सर एक कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि हमारा वागधरा संस्थान का विजन रहा है कि सच्चा बचपन, तो आजकल अधिकांश जो वाहन होते हैं फोर व्हीलर वाहन, वहाँ पर काली फिल्म की पट्टियाँ लगी होती हैं और अवैध पट्टियाँ भी, अगर जैसे कि आपने पूर्व में भी वार्ता में बताया कि जो बड़े बड़े लोग अपने आप को कहते हैं तो अपने गाड़ी के आगे बोर्ड लगा देते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि वास्तव में यातायात के तौर पर आप प्रभारी हो बांसवाड़ा के, उस पर उस दिशा में क्या कार्यवाही वर्तमान में हो रही है।
1: बिल्कुल आपका सही कहना, जिनकी भी काली फिल्म है उसमें एक निर्धारित रखा है, रेशो है कि इतनी अंधा वो उसका है, रेशो है, उस रेशो के अनुसार जो है तो उसको तो लगेगी। बाकी अगर ब्लैक ज़्यादा है निर्धारित रेशे, तो उनको हम तुरंत हटवाते हैं और उसका जुर्माना भी करते हैं। वी एक्ट के तहत 200 रुपया जुर्माना है, मौके पर ही जुर्माना करके मौके पर ही हटवा रहा हूँ। लेकिन कुछ बड़े लोग होते हैं, मेरी गाड़ी को कैसे हाथ मारा करके सिफारिश कराते हैं, तो मैं कहीं दफ़े सिफारिश को अनसुना करता हूँ, तो हो सकता है मेरे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी जीवन को बचाने के लिए अनसुना करता हूँ। और कहीं ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका कभी चालान नहीं कटा और सिफारिश कराते हैं, मैं वहाँ तक पहुँचे, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप अपनी सिफारिशों को रोक लें और निर्धारित शुल्क आप जमा करें जो उस राजकोष में जाएगा, और आप भी इसी कारण से कि चालान कटता है तो आगे से आप यातायात नियमों का पालन करना शुरू कर देंगे, अन्यथा आप हमेशा ये कहेंगे मेरे जेब में तो सिफारिश का तुक्का पड़ा हुआ, इक्का पड़ा हुआ है, और इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए चलेंगे। तो मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि जो भी सिफारिश करवाता है और इक्के को बाहर निकालता है, वो कृपया स्वयं यातायात नियमों का पालन करें।

0: मैंने सुना आपका कि जो 0 से 18 वर्ष के बालक हैं निःशुल्क आरटीआई के तहत शिक्षा प्राप्त करने के हैं, सरकारी योजना का जो लाभ है, उस समय आप इन बच्चों के बारे में सच्चा बचपन जो चला रहे हैं, 2-3 पॉइंट मैंने जो सुने हैं, वाकई बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि आज का बचपन कहीं न कहीं शहरों में किसी नशाखोरी में विलुप्त हो चुका है, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है और उनके अभिभावक स्वयं भी इस ओर विशेष ध्यान दें और अपने बालकों को सही दिशा में प्रेरित करें। थोड़े सख्त हों, चाहे बच्चा जिद करे तो उस सख्ती के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका अमूल्य कीमती समय आपने हमें और हमारे श्रोता साथियों को दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी एंड कमलेश जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बांसवाड़ा वासियों को एक ही निवेदन करूंगा कि जो रोड एक्सीडेंट में मौतें हो रही हैं उसको कम करने के लिए यातायात नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस बांसवाड़ा को सहयोग करें, सिफारिश से ना करावें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जैसा कि श्रोता साथियों, अभी हमारे कार्यक्रम में यातायात अधिकारी जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से जान पाए हैं कि अगर हमें हमारे जीवन को बचाकर रखना है, हमारे घर परिवार और देश के लिए कुछ करना है, तो हमें जो ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं उनका पालन अवश्य करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आज कार्यक्रम में जो भी बातें रही हैं वो आपको जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेने का। विदा तो जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी गीत के साथ साथियों आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम हमारे मेहमान वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में। साथियों, अहिंसा कायरता की आड़ नहीं है, अहिंसा तो वीर व्यक्ति का सर्वोच्च गुण है। अहिंसा का मार्ग हिंसा के मार्ग की तुलना में कहीं ज्यादा साहस की अपेक्षा रखता है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में।
1: हाँ।
0: जैसा कि पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम सबके गांधी में हमने जाना था सांप्रदायिक सौहार्द में ढेर सारी बातों को, इसी के साथ इसी प्रकरण में आगे बढ़ते हैं कशिश। तो श्रोता साथियों, बाल्यकाल से ही ऐसा नहीं लगा कि गांधी जी के मन में हिंदू और मुसलमानों को लेकर भेदभाव था। जब वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत जाने को निकले, तब उनको विदा देने के लिए 8-10 मित्रों में से 3-2 मुसलमान थे। अफ्रीका में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रंथों और इस्लाम का आदर पूर्वक अध्ययन किया था। उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप वे उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जिस निष्कर्ष पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने निजी अनुभव के आधार पर पहुंचे थे। वह सार यह था श्रोता साथियों कि सभी धर्म एक ही ईश्वर की उपासना के माध्यम से प्रकट होते हैं और मनुष्य मात्र सीमित शक्ति का होता है, इसलिए प्रत्येक धर्म में न्यूनाधिक अंश में थोड़ा अधूरापन रहेगा ही। इसी से वे धर्म परिवर्तन को अनावश्यक मानते थे, जबरन या लालच देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को अधार्मिक मानते थे। दक्षिणी अफ्रीका के उनके आश्रमों में कौमी एकता का ऐसा सुंदर वातावरण था कशिश कि वहाँ वैष्णव जन भजन, कभी मुस्लिम जन तो कभी ईसाई जन तो कभी जरथुस्ती बड़े ही प्रशासनिक ढंग से गाते और सारे आश्रमवादी उत्साह पूर्वक उसका अनुसरण करते। वहाँ के सत्याग्रह में अपनी संपत्ति को हंसते हंसते समर्पित कर देने वाले मोहम्मद कालंचिया जैसे साथी उनको मिले थे। इमाम साहब की बेटी के निकाह की पत्रिका गांधी जी के नाम से छपी थी, उनमें उन्होंने इमाम साहब के लिए मेरा सहोदर जैसे शब्द प्रयोग में लिए थे।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथियों भारत आने के बाद गांधी जी ने पहली बार मुंबई में ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों और पारसियों के साथ अन्य संप्रदाय के लोगों का झगड़ा देखा था। उस समय उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर देशों ने प्राण जोखिम में डालकर दंगा शांत कराने का काम किया था अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: अंततः गांधी जी के उपवास से शहर में शांति स्थापित हुई थी। वहीं हम देखेंगे जब गांधी जी ने 1924 में दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में रहते हुए 21 दिन के उपवास किए थे, उस समय अली बंधु उनकी माँ के अलावा डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खान जैसे लोग दीन बंधु एंड्रोस और पंडित मनमोहन मालवीय की भांति ही बराबर खड़े रहकर उनकी जबरदस्त सेवा करते थे।
0: बिल्कुल,
1: तब से श्रोता साथियों सर्वधर्म प्रार्थनाएं सभाएं अधिक प्रचलित हुई थी। गांधी जी के आश्रमों में ऐसा वातावरण था कि इस लेखक को स्वयं काफी बड़े होने तक इस बात का भान नहीं था।
0: बिल्कुल,
1: कि उनके मित्रों में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और कौन सवर्ण और कौन अवर्ण था। गोलमेज परिषद में जब गांधी जी ने ऐसा विधान किया कि इस परिषद में आए लोग तो सरकार ने चुन चुन कर निमंत्रित किए हैं, ये किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तब किसी ने उनसे पूछा था कि कांग्रेस कितने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है।
0: बिल्कुल,
1: गांधी जी ने कहा था कि उसका उत्तर जानना हो तो भारत की जेलों में जाकर आजादी के आंदोलन में जेल गए लोगों की सूचियां देख लो। गांधी जी द्वारा हाथ में लिए गए रचनात्मक कार्यों में से शायद ही अंजलि जी ऐसे कुछ थे जो संपूर्ण समाज का स्पर्श न करते हो।
0: बिल्कुल,
1: खादी ग्रामोद्योग, मजदूर प्रवृत्ति, ग्राम स्वास्थ्य, राजभाषा और स्वच्छता जैसे बहुत से कार्यक्रम ऐसे थे जो किसी भी तरह के भेदभाव के बगैर संपूर्ण समाज की सेवा में समर्पित थे। जिसका परिणाम साथियों गांधी जी का समाज के प्रत्येक वर्ण या वर्ग के साथ आत्मीय संबंध बन जाता था।
0: बिल्कुल कशिश, गांधी जी की सेवा करने की एक रीति प्रत्येक वर्ण या वर्ग को अपनी कमी या त्रुटि की तरफ उंगली का संकेत करना भी था। वे जिस तरह से उस समय के समाज में भयभीत हिंदुओं को अपने मन के भीतर की कायरता को निकाल बाहर रखने को कह सकते थे, उसी तरह मालवियों की गुंडागिरी को भी ललकार कर निकाल सकते थे। अस्पृश्यों को वे मृत पशु का मांस खाने की आदत छोड़ने को कह सकते थे, तो वे सवर्णों को यह भी कह सकते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा कलंक है। उनका ऐसा अनुभव था कि मनुष्य मन में कटुता रखे बिना अप्रिय सत्य भी कह सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बातें हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मा दर्शन में सांप्रदायिक सौहार्द प्रकरण की ओर। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले ढेर सारी बातें रही थी और बताया था कि गांधी जी का ऐसा अनुभव था कि मनुष्य मन में कटुता रखे बिना अप्रिय सत्य भी कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, इसी के आगे अगर बात करें तो हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में कट्टरपंथी गांधी जी से नाराज थे। इसका एक कारण यह था कि यदि वे उनमें से अनेकों के स्थापित हित पर ही प्रहार करते थे तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दोनों पक्षों में ऐसे लोग अधिक होंगे जो गांधी जी की अप्रिय सत्य को झेल न सके हो।
1: जी जी
0: दोस्तों, कतिपय उज्जवल अपवादों को छोड़ते हुए बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मतभेद रखने वाले दलों के साथ सामान्य राजनीतिज्ञों की तरह व्यवहार करते थे। अतः अंजलि जी, उनके कथन और व्यवहार में जो अप्रिय सत्य प्रकट होता था वह जरा सा भी कटुता रहित होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। गांधी जी को स्वराज प्राप्ति के अपने लक्ष्य के लिए कांग्रेस का एक उपकरण के बतौर उपयोग करना पड़ा था।
1: जी जी,
0: इससे कांग्रेस का दोष बहुधा गांधी जी पर मढ़ा जाता है। गांधी जी वैसे तो पूरे देश के दोष को अपना ही दोष समझते थे। इसी से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं द्वारा लीग या जिन्ना के साथ किए गए अहंकार मिश्रित व्यवहार का दोष अपने ऊपर ही मढ़ा गया।
1: बिल्कुल,
0: तो उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था।
1: बिल्कुल कशिश, 1944 में जिन्ना के साथ असफल वार्तालाप के पश्चात गांधी जी ने कौमी सवाल को लेकर जो काम किए थे वे सब व्यक्तिगत हैसियत से ही किए थे। उन्होंने ये कार्य बड़े राजनीतिक नेता के रूप में दो कौमों के बीच समाधान कराने वाले के रूप में नहीं वरन एक शांति सैनिक के रूप में किए थे।
0: बिल्कुल,
1: वैसे गांधी जी की ये दोनों भूमिकाएं अलग अलग थी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सीधी कार्रवाई के बाद गांधी जी कलकत्ता, नोआखाली बिहार, दिल्ली, कलकत्ता, फिर दिल्ली गए। नोआखाली पहुँचे तब वह उपद्रव हो चुका था।
0: जी हाँ,
1: पर कलकत्ता और दिल्ली में वे थे तब उपद्रव चालू हुआ था। नोआखाली और बिहार में प्रत्यक्ष हिंसक कृत्यों को रोकने का काम उनके हिस्से नहीं आया। दंगों के शिकार बने हजारों परिवार के आंसू पोंछने, संपूर्ण क्षेत्र में निर्भयता का वातावरण बनाने, दंगा कराने वाले लोगों के मन में पश्चाताप का भाव पैदा करने या घर बार छोड़कर भाग जाने वाले इकाइयों को वापस लौटाने की प्रेरणा का काम उन्होंने ही किया था।
0: बिल्कुल,
1: कलकत्ता और दिल्ली में उन्होंने आमरण अनशक करके अपने प्राण दांव पर लगाकर महानगरों की अशांति मिटाई थी। उनके उपवास से प्रेरित होकर अनेक सेवक शहर की गली गली में घूम आए थे। कलकत्ता और दिल्ली में श्रोता साथियों, गांधी जी ने अशांति के समक्ष अपने जीवन की बाजी ही लगा दी थी। उन्होंने शहर में शांति नहीं होती तब तक अनशन करने की घोषणा की थी और इसकी घोषणा किए जाने से पहले ही खाना लेना छोड़ दिया था। उनकी शांति के लिए गांधी जी प्राण देने को तैयार हो गए हैं यह देखकर लोग स्तंभित हो गए। लोग सोचने लगे कि गांधी जी अनशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कलकत्ता में तो जिन्होंने गुंडागर्दी की थी उनके गृहणियों ने भी अंत्याग कर दिया था। गांधी जी अनशन करे और हमसे ग्रास गले नीचे कैसे उतरेगा। दंगा करने वाले यह देखकर पछताए, उन्होंने अपने काम में लाए और इकट्ठे किए हथियार लाकर गांधी जी के चरणों पर रख दिए।
0: बिल्कुल,
1: दिल्ली में होटल वालों और खाना बनाने वालों ने खाना पकाना बंद रखा। सभी दलों के लोग गली गली घूम गए। लाखों लोगों ने शांति प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए। जिन निराश्रितों के क्रोध के कारण अशांति फूट निकली थी उनमें से हजारों ने गांधी जी के साथ चुपचाप उपवास शुरू किया। दोनों महानगरों के राजनीतिक नेताओं के शहर में अशांति नहीं हो पाई। ऐसी गारंटी देने के बाद गांधी जी ने उपवास तोड़ा। कलकत्ते में स्थापित शांति देखकर गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने गांधी जी को एक पत्र में लिखा, पंजाब में हमारे पास 55,000 सैनिक हैं और विशाल स्तर पर वहां दंगे हो रहे हैं। बंगाल में हमारा दल एक ही आदमी का बना है और वहां बिल्कुल दंगे नहीं। एक फौजी अधिकारी की तरह साथ ही एक प्रशंसक की तरह एक आदमी के सीमा दल को मेरी ओर से बधाई देने दे। इस प्रकार गांधी जी की कौमी एकता के लिए प्रयास देश के विभाजन को रोकने में निष्फल रहे थे। उसके एक से अधिक कारण थे परंतु एक व्यक्ति के रूप में और एक शांति सैनिक के रूप में गांधी जी ने इतनी सफलता पाई कि जिसकी जोड़ इतिहास में शायद ही नहीं मिल सके।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो श्रोता साथियों ये तो हमारी आपसे बातें रही सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर। तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी आज हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का अंतिम गीत सुन लेते हैं।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर जो बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी जी।
0: अगले रविवार को हमारी आपसे मुलाकात होगी नए प्रकरण, जिसमें हम जानेंगे रचनात्मक कार्यक्रमों के बारे में। लेकिन आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में एक नए प्रकरण से जुड़ी ढेर सारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

बागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: साथियों, गणतंत्र का वंदन करता चले लोकतंत्र सरकार भारतीय संविधान को नमन करते हैं बारंबार।
1: जी हाँ, सर्वधर्म समभाव एकता संप्रभुता संविधान, हर नागरिक भाग्य विधाता शील राष्ट्र विधान।
0: जी हाँ, न्याय व्यवस्था कार्य प्रणाली अनूठी और बेजोड़, हर दोषी को दंड मिले कानून का मुश्किल तोड़।
1: देश प्रेम की धाराएं हो बेरी की हर कोशिश बेकार, मैं भारत के संविधान को नमन करता हूँ बारंबार।
0: जहाँ देश हित राष्ट्र प्रेम की अलग जगाई जाती, सीमा पर तैनात सिपाही रणभेरी बजाई जाती,
1: आम आदमी रहे चैन से जनता को मिले अधिकार, प्रतिभाओं की पूजा जहाँ प्रेम मधुर मिले व्यवहार,
0: कीर्ति पताका जग लहराए दिलों में पलता प्यार, हम भारत के संविधान को नमन करते हैं बारंबार।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार ये विशेष कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमने जाना था, भारतीय संविधान के रोचक किस्सों में हम जान पाए थे क्या संविधान भारतीय संविधान है। इसी के साथ हमने जाना था संविधान सभा से राष्ट्रद्रोह को हटाया, और हमने जाना था अच्छा संविधान सफल होगा यदि कुछ चीजें मानी जाए तो। इसी के साथ हमने जाना उद्देशिका में ईश्वर, देवी और महात्मा गांधी का नाम क्यों नहीं आया।
1: बिल्कुल,
0: यही आज बात करते हैं। आम भारतीयों ने दिए थे संविधान के मसौदे पर सुझाव।
1: जी हाँ अंजलि, अगर इस पर जाने तो 21 फरवरी 1948 को संविधान मसौदा समिति की तरफ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा संविधान सभा के सभापति या अध्यक्ष कहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया था। इस पर सरकार के विभागों और राजनीतिक दलों में तो संवाद हुआ ही, लेकिन साथियों संविधान के मसौदे को छाप कर पूरे देश में प्रसारित भी करवाया।
0: जी बिल्कुल।
1: इतिहासकार और एशियाई अध्ययन विभाग हेफा इसराइल की ऑर्नित शानी ने अपने एक शोध पत्र में लिखा है कि इसके बाद कई व्यक्तियों और समूह ने संविधान सभा को अपने सुझाव और विचार भेजे।
0: जी जी।
1: कई लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते थे।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि वेद प्रचार मंडल ने तो अंतर जातीय भोज और विवाह राज्य के द्वारा किसी धर्म की स्वीकार्यता पर प्रतिबंध सरी के प्रस्तावों के साथ संविधान का एक प्रारूप ही जमा किया था। एक सज्जन केवी सुंदरेशा अय्यर चाहते थे कि पारंपरिक व्यवहार में राज्य का दखल न हो, यहाँ तक कि छुआछूत के व्यवहार में भी। इतना ही नहीं, संविधान सभा की बहस और कार्यवाही पर छोटी छोटी पुस्तकाएं भी बनाई गई।
1: बिल्कुल अंजलि, और यहीं अगर संविधान सभा में जम्मू कश्मीर और संविधान के बारे में हम जाने तो संविधान सभा के 4 सदस्य ऐसे थे जिन्हें 2 संविधान सभाओं में होने और 2 संविधान बनाने की भूमिका निभाने का अवसर मिला। ये थे शेख अब्दुल्ला, मोतीराम बेगरा, मिर्जा अफजल बेग और मौलाना मोहम्मद मसूदी।
0: जी जी।
1: साथियों, भारत की संविधान सभा के 4 सदस्य भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 22 जनवरी 1950 को सभा के अन्य सदस्यों के साथ थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान भी बनाने का अधिकार दिया गया था। इस काम में शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर से ही सहायता मांगी थी।
0: जी जी।
1: लेकिन साथियों, इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना था कि भारत में जम्मू और कश्मीर का रिश्ता क्या होगा, रियासत की भूमिका क्या होगी।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि 27 अक्टूबर 1950 को शेख अब्दुल्ला के दल जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत सरकार से वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठित करने के लिए संयोजन करने का प्रस्ताव पारित किया। अगस्त और सितंबर 1951 में वहां चुनाव हुए और सभी 75 स्थान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते।
1: जी हाँ।
0: 31 अक्टूबर 1951 को श्रीनगर में संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें शेख अब्दुल्ला ने घोषणा की कि निश्चित शर्तों के अधीन जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। श्रोता साथियों, संविधान सभा की तरफ से यह घोषणा होना बहुत ही महत्वपूर्ण था।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा ने संविधान बनाने की ठीक वही पद्धति अपनाई जो भारत ने अपनाई थी। उसी तरह की समितियां बनाई गई और समितियों की रिपोर्ट चर्चा और निर्णय के लिए संविधान सभा में रखी गई। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की बैठकें 5 सालों में 56 दिनों चली और 19 नवंबर 1956 को जम्मू और कश्मीर ने अपना संविधान स्वीकार किया।
1: बिल्कुल।
0: यह संविधान घोषणा करता है कि जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा।
1: जी हाँ। तो जैसा कि अंजलि, हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। आगे हम बताएंगे कि सिखों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कैसे किया था, हाथ से कैसे लिखा गया था संविधान। साथ ही हम हमारे श्रोता साथियों को बताएंगे भारत के संविधान में 5,000 सालों के इतिहास के चित्रण के बारे में।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ हम जानेंगे संविधान सभा की कार्यवाही पर कुल व्यय और उसके दर्शकों के बारे में।
0: जी बिल्कुल। तो बातें तो ढेर सारी होंगी, लेकिन अभी करते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि कार्यक्रम में जागृति जी बातें बहुत अच्छी चल रही है और आपने कहा था कि गीत के बाद हम जानने वाले हैं सिखों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया था। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के संविधान सभा के लिए सिख समुदाय के लिए जितने स्थानों का निर्धारण किया था उससे सिख नेता नाराज थे। 25 मई 1946 तथा 10 जून 1946 को सिख पथिक कॉन्फ्रेंस ने कैबिनेट मिशन योजना से असहमति जताते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन 10 अगस्त 1946 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके हितों की रक्षा का आश्वासन देते हुए सिखों से संविधान सभा में शामिल होने का अनुरोध किया। फिर संवाद के बाद 14 अगस्त 1946 को सिख पंथिक प्रतिनिधि बोर्ड ने कांग्रेस के आश्वासन पर संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया।
1: जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। और अगर हाथ से लिखे गए संविधान के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों से बात करें तो भारतीय संविधान के पूरी तरह तैयार होने के बाद इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखवाई गई थी।
0: जी जी।
1: संविधान की इस हस्त लिखित प्रति को पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तैयार किया था। हाथ से लिखे गए दस्तावेज में कहीं भी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ तक कि शाही का कोई अतिरिक्त बिंदु भी नहीं गिरा दिखाई देगा। साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब मानदेय की आवश्यकता के बारे में पूछा अंजलि, तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, ईश्वर की अनुकंपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से खुश हूँ। बस एक अपेक्षा है, संविधान के हर पृष्ठ पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का भी नाम लिखूंगा।
0: जी बिल्कुल।
1: संविधान की मूल प्रतियों पर सबसे आखिरी पृष्ठ पर लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, पौत्र श्री राम प्रसाद रायजादा सक्सेना।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें भारत के संविधान में 5000 सालों के इतिहास के चित्रण की, तो साथियों भारत का संविधान भारत के इतिहास और संस्कृति को अपने आप में समेटे हुए है।
1: बिल्कुल।
0: एक तरफ तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव की मंशा इसकी उद्देशिका में दर्ज है जागृति जी, तो दूसरी ओर संविधान के हर भाग पर भारत के इतिहास की संकेत के रूप में एक चित्र उकेरा गया है।
1: बिल्कुल।
0: ये 22 चित्र बनाए थे शांति निकेतन के नंदलाल बोस तथा वहाँ के कलाकारों ने, और ये 22 चित्र 12 विषय के परिचायक हैं। मोहनजोदारो काल, वैदिक युग, महाकाव्य काल यानी रामायण और महाभारत, महान जनपद और नंदकाल, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन का काल, भारत की स्वतंत्रता का क्रांतिकारी संघर्ष और भारत का प्राकृतिक स्वरूप, जिसमें स्थापत्य कला और प्राकृतिक विविधता के चित्र हैं। इसमें राम, लक्ष्मण, सीता, बुद्ध, अर्जुन और कृष्ण, शिवाजी, महावीर, नटराज, अकबर, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, टीपू सुल्तान के भी चित्र हैं। श्रोता साथियों, संविधान के प्रस्तुत की साज सज्जा में ब्यौरा राम मोहन राय सिन्हा ने भी अहम भूमिका निभाई है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने भारत के संविधान में 5000 सालों के इतिहास के चित्रण के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताया, यही हम जानते हैं संविधान सभा कार्यवाही पर कुल व्यय और उसके दर्शक के बारे में।
0: जी बिल्कुल।
1: साथियों, 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान सभा में संविधान को अंगीकार किया गया, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधानसभा को बताया कि लगभग 3 साल तक चली संविधान सभा की प्रक्रिया पर कुल 63,96,721 रुपए का व्यय आया। जब संविधान बन रहा था तब लगभग 53,000 लोगों ने दर्शक दीर्घा से उस प्रक्रिया को देखा।
0: जी हाँ।
1: PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार संविधान सभा में हुई बहसों चर्चाओं में लगभग 36 लाख शब्द बोले गए थे। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा 2,67,544 शब्द बोले गए, क्योंकि उन्हें संविधान सभा में उठाए गए हर प्रश्न और प्रस्तुत किए गए संशोधन प्रस्तावों पर जवाब देना था।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी के साथ मसौदा समिति के अन्य सदस्य T.T. कृष्णामाचारी द्वारा 97,638 शब्द, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा 61,162, K.M. मुंशी द्वारा 60,056, N. गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा 56,025,

0: आर के सिंधवा ने 88,595 शब्द, जवाहरलाल नेहरू ने 73,804, पी एस देशमुख ने 69,557, हृदयनाथ कुंजरू ने 69,158 शब्द और एम अंतशयनम आयंगर ने 55,357 शब्द बोले। संविधान सभा की महिला सदस्यों में जी दुर्गाबाई ने 22,905 शब्द, बेगम एजाज रसूल ने 10,480 शब्द, रेणुका रॉय ने 10,312 शब्द, पूर्णिमा बनर्जी ने 9,013 शब्द, दक्षायणी वेलायुद्धन ने 4,415 शब्द, एनी मेस्करिन ने 2,970 शब्द, सरोजनी नायडू ने 2,342 शब्द, हंसा मेहता ने 1,837 शब्द, विजयलक्ष्मी पंडित ने 1,164 शब्द और अम्मू स्वामीनाथन ने 1,066 शब्द बोले थे।
1: जी हाँ, इसी तरह हम कह सकते हैं कि संविधान सभा की कार्यवाही पर कुल व्यय और उसके दर्शक का क्या क्या था वो हमने आपको साझा किया।
2: जी बिल्कुल।
1: अब देख पा रहे हैं कि समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। अगले रविवार कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बोन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो ने राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
2: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और हाजिर हो चुके हूँ कार्यक्रम दादी माँ की

रसोई में एक नई व्यंजन विधि के साथ में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, हमारी आपसे हर रविवार को मुलाकात होती है एक नए व्यंजन विधि के साथ में। तो श्रोता साथियों, आज भी एक ऐसी ही व्यंजन विधि को लेकर कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में मैं हाजिर हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यंजन विधि मैं आपको बताने वाली हूँ वो है खीरा और पुदीना का रायता। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि खीरा और पुदीना रायता गर्मियों के मौसम में बहुत लोकप्रिय और स्वास्थ्य वर्धक व्यंजन है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ठंडक पहुंचाने और पाचन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। श्रोता साथियों, जून जुलाई जैसे गर्म महीनों में इसका सेवन विशेष रूप से हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम में जरूर बताऊंगी इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए होगी और किस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, तो ढेर सारी बातें जरूर होंगी। लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि साथियों, गीत से पहले मैंने आपको हमारे आज के कार्यक्रम में होने वाली बातचीत यानी कि व्यंजन विधि के बारे में तो बता ही दिया था कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम घर पर खीरा पुदीना रायता कैसे बनाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस व्यंजन विधि को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो सबसे पहले साथियों, आपको ताज़ा दही लेना है 2 कप, खीरा लेने हैं 2 मध्यम आकार की, साथ ही साथियों आपको ताजी पुदीना की पत्तियां 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई लेनी है, भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है आपको 1 चम्मच, काला नमक लेना है आपको छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं, साधारण नमक आपको लेना है वो भी आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, काली मिर्च लेनी है आपको 1 छोटी चम्मच, हरा धनिया लेना है 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ, बर्फ के कुछ टुकड़े भी आप ले सकते हैं। तो श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि खीरा और पुदीना का रायता बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। अब यही बात आती है हम इसे बनाने के लिए कौन सी विधि अपनाएं। तो साथियों, सबसे पहले विधि की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले खीरे को अच्छी तरह से धो ले। यदि खीरा मोटे छिलके वाला हो तो उसे हल्का सा ऊपर से छिल डालें। इसके बाद आप खीरे को कद्दूकस कर लें। साथ ही श्रोता साथियों, आपको दही को 1 बड़े बर्तन में लेकर अच्छी तरह से फेंट कर लें ताकि वो चिकना और मलाईदार हो जाए। फेंट किए हुए दही में कद्दूकस किया हुआ खीरा, बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां और हरा धनिया डाल लें। अब इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाली, साधारण नमक डाली और काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। रायते को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें साथियों। ठंडा होने के बाद इसे भोजन के साथ आप परोसें। श्रोता साथियों, ये तो हमने बात की खीरा और पुदीने का रायता बनाने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको खीरा और पुदीना रायते के स्वास्थ्य लाभ बताना चाहूंगी। श्रोता साथियों, इससे हमें कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इससे हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती है। खीरा और पुदीना दोनों की तासीर ठंडी होती है। यह गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान संतुलित रखने में सहायता करते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, खीरे में लगभग 95% पानी होता है जिससे शरीर में पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और डिहाइड्रेशन का खतरा भी नहीं रहता है। दही, खीरा और पुदीना में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। यह कम कैलोरी वाला होता है और पेट भरने वाला व्यंजन है, इसलिए श्रोता साथियों, यह हमारे वजन को भी नियंत्रित करता है। साथ ही बताना चाहूंगी साथियों कि यह हमारे त्वचा के लिए भी लाभकारी है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, साथ ही हृदय स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। खीरे में कैल्शियम पाया जाता है जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। ये तो श्रोता साथियों मैंने आपको बताया कि इसके लाभ क्या हैं। यही मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ सावधानियों के बारे में, जैसे कि हमेशा ताज़ा दही और ताजे खीरे का आप उपयोग करें। साथ ही श्रोता साथियों, अधिक खट्टे दही का प्रयोग ना करें। रायते को लंबे समय तक कमरे के तापमान में न रखें। अगर घर में किसी को अधिक सर्दी जुकाम है तो ठंडा रायता खाने से बचें। साथ ही श्रोता साथियों, आपको कहना चाहूंगी कि खीरा पुदीना रायता स्वाद, पोषण और स्वास्थ्य का बेहतरीन संगम है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, पानी की कमी को दूर करता है और साथ ही संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। इसीलिए इसे नियमित भोजन में शामिल करना एक अच्छा स्वास्थ्य वर्धक विकल्प है। तो जैसा कि दोस्तों, ये व्यंजन विधि तो हमारी आपसे पूरी हुई, अब और आगे मुझे एक और व्यंजन विधि के बारे में बताना है, तो वो तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले हमने एक स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के बारे में जाना था, जो कि थी खीरा और पुदीना का रायता। अब यही साथियों एक और स्वादिष्ट व्यंजन विधि के बारे में बताना चाहूंगी, और वो है पपीता और अनार का सलाद। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि पपीता और अनार का सलाद एक पौष्टिक, स्वादिष्ट और रंग बिरंगी रेसिपी है। यह सलाद विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। गर्मियों के मौसम में यह शरीर को ऊर्जा देती है, पाचन सुधारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। अब यही बात आती है, इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। तो श्रोता साथियों, सामग्री की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक पका हुआ पपीता लेना है 2 कप, जो कि कटा हुआ होना चाहिए। अनार के दाने लेने हैं 2 कप। खीरा लेना है 1 बारीक कटा हुआ। नींबू का रस लेना है 1 बड़ा चम्मच। काला नमक लेना है आपको 1 छोटा चम्मच। भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है आपको 1 छोटा चम्मच। काली मिर्च लेनी है आपको 1 छोटी चम्मच। पुदीना की पत्तियां लेनी है आपको 1 बड़ा चम्मच, जो कि बारीक कटी हुई होनी चाहिए। हरा धनिया लेना है आपको 1 बड़ा चम्मच। श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि पपीता और अनार का सलाद बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। यही मैं आपको विधि के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले आपको पपीते को धोकर छील लें और उसके बीज निकाल लें। फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अनार के दाने निकाल कर अलग रखें। श्रोता साथियों, एक बड़े बर्तन में पपीते के टुकड़े, अनार के दाने और कटा हुआ खीरा डालें। अब इसमें काला नमक डालें, भुना हुआ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालें। ऊपर से नींबू का रस डालकर सभी सामग्री को हल्के हाथों से मिला लें। अंत में श्रोता साथियों, पुदीना और हरा धनिया डालकर सजाएं और तुरंत परोसें। श्रोता साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि सामग्री क्या चाहिए होगी और इसको बनाने के लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है। साथ ही श्रोता साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी, पपीता और अनार के सलाद के कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये हमारे पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पपीता और अनार दोनों विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, रक्त की गुणवत्ता सुधारने में भी ये सहायक है। अनार आयरन और एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, जो रक्त निर्माण में सहायता करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथियों, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी यह लाभकारी है और हमारी त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाता है। हमारे वजन को नियंत्रित रखता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। पपीते में पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो गर्मियों में शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। साथ ही श्रोता साथियों, मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी। अधिक स्वाद के लिए इसमें सेब, अमरूद या संतरे के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। सलाद को ताजा बनाकर तुरंत सेवन करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए इसे रंगीन कटोरी में आप परोस सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी, पपीता और अनार सलाद स्वाद और स्वास्थ्य का बेहतरीन मेल है। यह पाचन को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा देता है और गर्मियों में ताजगी बनाए रखता है। नियमित रूप से इस सलाद का सेवन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में सरल और प्रभावी कदम हो सकता है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मेरी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल को नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन तकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पेरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था नाना अंजलि बोन हूँ था का अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।